फ्रीक्वेंसी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। गलतियां आपके अनुभव को बढ़ाती हैं और अनुभव आपकी गलतियों को कम करता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो दूसरे लोग आपकी

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां अपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक किया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाई राम राम, भाई कृषि की बात हम जिक्र करेंगे धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियों के बारे में। भाई सबसे पहले तो जड़ भी हम धान की नर्सरी तैयार करें हैं, हमारे पास भी पानी के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। इसकी जांच करे उड़ा जो पानी है वो पानी मार दो रहो, नहर का हो बहुत बढ़िया है, नाली का आसपास हो तो उसमें भाई मार दो सुविधा रहे है कि भी हम जब भी उसमें पानी की जरूरत हो दे सके हैं। और भाई दूसरा, जिस जमीन में भी हम नर्सरी बनाए हैं वह जमीन इसी हो कि पहले उसमें किसी डाल का कोई भी जो रोग है वो नहीं आया हो। और इसके बाद में भी बात आ जाए कि जो हम बीज ले हैं, क्योंकि भाई धरती माता अगर उसकी उर्वरा शक्ति बढ़िया है उसके बाद में सारा दारोमदार जो आ जाए हमारा बीज पे। इसके लिए भी भारी और स्वस्थ बीज का हमने चुनाव करना है, 10 किलोग्राम बीज और इसमें भाई नमक डाल के यानी कि 10 लीटर पानी में 1 किलो जो नून है नमक है वो हमने डालना है। उसमें फिर जो हमारा धान का बीज है धीरे धीरे भी आता हमने चलाना है, हिलाना है। इसमें क्या होगा, जो अड़के रोगग्रस्त बीज हैं या फिर जिस तरह भाई आभासी कंडुआ के पिंड हैं ऊपर तैरने इसमें लग जाए हैं उन्हें निकाल के भी हम नष्ट कर दें, उस पानी से हटा दें। और जो स्वस्थ बीज, जो भारी बीज है जो नीचे बैठ गया उस बीज का चुनाव हमने करना है। लेकिन वे नमक का पानी में तो जिस तरह हम बीज निकालेंगे कम से कम भी 3 से 4 बार बहुत अच्छी डाल साफ सुथरा पानी में, स्वच्छ पानी में अच्छी डाल हमने धो लेना है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बीज जनित हैं, जो बीजा में हुए हैं उनसे बचाव खातर भाई 10 लीटर फफूंदनाशक घोल हमने बनाना है, जिसमें भाई 10 ग्राम कार्बेंडेजिम जो दवाई है वह डाल लें और भी 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवाई है वो हमने डाल लेनी है और पानी का घोल इसमें रहेगा भाई 10 लीटर। और इसके बाद भाई 10 से 12 किलोग्राम जो बीज है वो हमने 24 घंटे भिगो के छोड़ देना है और उसके बाद जो है भाई हमने नर्सरी में इसकी बिजाई करनी है। और भी नर्सरी में पौध लगाने से पहले 10 से 12 गाड़ी जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो हम ले सके हैं। अगर भी गोबर की गली सड़ी खाद हमारे पास संभव नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट की जो खाद है, केंचुए की जो खाद है वो भी हम इसमें डाल सके हैं। और इसके अलावा भाई 22 किलोग्राम जो यूरिया खाद है वो यानी कि भाई लगभग 1 कट्टा यूरिया का 65 किलोग्राम SSP सिंगल सुपरफास्फेट और 10 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट है वो भी हमने नर्सरी में डालनी है। और इसके बाद भी 22 किलोग्राम यूरिया यानी कि 44-45-46 किलोग्राम जो यूरिया है प्रति एकड़ के हिसाब से फिर हमने डालनी है। भाई जो धान की नर्सरी है उसमें खरपतवार नियंत्रण खातर बिजाई से 1 से 3 दिन के बाद में 600 ग्राम जो सोफिट दवाई है जिसने भाई प्रेटिला कलोर के नाम से हम जाना 30% ताकत की है, प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिला के फिर इसका प्रयोग हमने यानी कि भाई 1.5 लीटर जो दवाई है ब्यूटा क्लोर वो भी हम ले सके हैं, या फिर भाई पेंडी मेथालिन जो दवाई है जानी पहचानी दवाई है स्टाम्प 30% ताकत की, कोई भी एक दवाई लेके 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिला के और भी जो अंकुरित दान है उनका बोने के बाद में यानी कि 6 दिन के बाद में प्रति एकड़ के हिसाब से ये दवाई हमने डालनी है, या फिर भाई जो मिले जुले खरपतवार हैं उनका नियंत्रण खातर 100 मिलीलीटर बिस्पायरी जो दवाई है बैक सोडियम नोमिनी गोल्ड के नाम से 10% ताकत की 200 लीटर पानी में घोल बना के बिजाई के 15 दिन के बाद में हमने प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। और भाई धान में जो भी हम बीज ले हैं, कई बार ये भी कर ले हैं कि भाई अपने प्योद मोल भी ले हैं, लेकिन जो जो उन्नत किस्में उनका हमने चुनाव करना है। कम अवधि वाली जो किस्में हैं बोनी किस्में हैं IR64 है, HKR40 है, HKR47 है और भाई गोविंद की जो किस्म है इन किस्मों की भाई जो हमने नर्सरी 15 से 30 जून तक लगानी है। और भाई सिंचाई का हमने इसमें पूरा ध्यान रखना है, जब भी हम सिंचाई करें तो कोशिश भाई ये करें कि भाई जो हमारा फुहारा सिस्टम है उससे हम छिड़काई कर दें, कोशिश भाई ये रखें भी शाम का टाइम पर संध्या समय पर छिड़काव हम करें, तो भी इसमें स्वस्थ बीज हम लें, बीज उपचार हम करें, नर्सरी की जगह अच्छी बढ़िया डाल हम सुनिश्चित कर लें। वे कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इनका ध्यान हम रखें तो भी धान की अच्छी नर्सरी हम बना के बढ़िया पैदावार हम ले सकें। तो भी कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है।

बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ. जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चर्चा का विषय। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9:30 पर। शाम 7:10 पर आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हमारी सेहत ये कार्यक्रम प्रसारित होगा आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह के साथ रक्तदान के लाभ व सावधानियां विषय पर की गई भेंटवार्ता।

कृषि जगत कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसके तहत आज आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता एक किसान से।

सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25। सुबह 8:30 कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार होंगे सुमेर सिंह आर्य और सुंदर सिंह।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे कार्यक्रम मन भावन में, दोपहर 1:10 पर पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में हमारी दूसरी प्रसारण सभा में, शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में, रात 9:15 कार्यक्रम एक फिल्म से के तहत और रात 10 बजे कार्यक्रम मन चाहे गीत में। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेहत, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह के साथ रक्तदान के लाभ व सावधानियां विषय पर एक भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज एक बातचीत करेंगे रक्तदान के लाभ व आनिया, और जानकारी देने खातिर अपने स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह। आप हैं प्रोफेसर पैथोलॉजी और आप आए हैं भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहब, एक तो रक्तदान है ये क्या, और महादान है, सबसे बड़ा दान है इसका, क्योंकि एक भय भी है लोगों के अंदर, नहीं मैं खून नहीं दूंगा, मैं रक्त नहीं दूंगा, पता नहीं क्या हो जाए, ये बात है जी, तो यूँ क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब?
2: रक्तदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रक्तदान जो है, रक्त जो है वो हमेशा हमें सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग से, मनुष्य से ही मिल सकता है,
1: यानी
2: कि ये मशीन से हम नहीं बना सकते।
1: अच्छा।
2: कुछ पहले कुछ कोशिश करी गई थी कि रक्तदान, रक्त के कुछ सब्स्टिट्यूट जो हैं वो हों, पर वो कामयाब ज़्यादा होने नहीं पाए,
1: यानी उसका विकल्प कुछ नहीं पा,
2: उसका विकल्प कोई नहीं है कुछ, तो इसलिए रक्त जो है वो सिर्फ मनुष्य से ही मिल सकता है। और दूसरा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें कि रक्तदान जरूरी होता है
1: जी।
2: जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है।
1: अच्छा।
2: तो उनमें तो ऐसी कई सारी कंडीशन होते हैं, उनमें ये जरूरी होता है।
1: और कई बार डॉक्टर साहब, जिस तरह एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जरूरी हो जाता है उसके लिए,
2: तो इन कंडीशन में सिर्फ रक्त दे के जान बच सकती है पेशेंट की, तो इसलिए रक्तदान जो है इसको महादान कहा गया और ये बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज बात, चलो ठीक है ये महादान है और जरूरी है ये, तो इसमें किस उम्र के दे सकते हैं, यानी छोटे छोटा और बड़े से बड़ा किस उम्र तक दे सकते हैं?
2: डोनर जो है 18 साल से
1: जी
2: 60 साल तक का होना चाहिए।
1: अच्छा जी।
2: फर्स्ट टाइम डोनर जो है
1: जी,
2: वैसे 18 से 65 तक का भी सेकेंड टाइम डोनर तक करा जा सकता है
1: जी।
2: उसके बाद इस एज ग्रुप में
1: जी
2: डोनर जो है वो रक्तदान कर सकते हैं, अगर वो वैसे स्वस्थ हैं, जो कि वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करता है। अगर मेडिकल ऑफिसर को थोड़ा सा भी लगे कि डोनर स्वस्थ नहीं है तो वो ब्लड कलेक्ट करने से मना कर देते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब,
2: उम्र है जिसमें कि वो रक्तदान कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस तरह ये मान लिया स्वस्थ है, चाहे वो 80 साल का, वो भी दे सकता है?
2: नहीं,
1: अगर मान लिया डॉक्टर रिकमेंड कर दे तो
2: नहीं, वो गवर्नमेंट लॉ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: 65 साल से ज्यादा उम्र नहीं हो सकती,
1: नहीं हो सकती।
2: और जो पहली बार जो डोनेट कर रहे हैं उसकी 60 साल से ज्यादा उम्र नहीं हो सकती।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जीवन में कितनी बार दे सकता है ब्लड ये?
2: देखो, अगर हीमोग्लोबिन ठीक रहता है
1: जी
2: मरीज का
1: जी,
2: तो हर 3 महीने में दे सकता है।
1: अच्छा।
2: हम डोनर्स को जानते हैं जिन्होंने लाइफ में 50-50 बार तक डोनेट करा
1: जी। हाँ, अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसने 50 बार किया, इतनी बार किया।
2: अगर हीमोग्लोबिन ठीक है, जो कि उस टाइम जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब हम देखते हैं, तो वो हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: यानी जो डोनर है वो जाता है आपके पास, आप उसका वो करते हो, चेकअप करते हो पहले? देखिए,
2: पूरा एक डिटेल चेकअप होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है बीमारियां होती हैं कई तरह की, जो कि उसको भी नहीं पता होता, क्या उन बीमारियों का भी पता चल जाता है अगर मान लिया टेस्ट करते हैं?
2: उसके लिए हम एक डोनर को फॉर्म देते हैं, वो उसको भरता है फॉर्म को, उसमें एक पार्ट होता है जिसमें कि वो खुद भरता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट जो वो मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करता है, और फिर कोई भी डाउट हो वो उनसे पूछते हैं, वो सारा अगर सब कुछ सही है
1: जी,
2: तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि संक्षेप में बताने में
1: जी,
2: एक तो कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए
1: जी,
2: सांस की बीमारी नहीं होनी चाहिए, किडनी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, लिवर की बीमारी नहीं होनी चाहिए
1: जी,
2: ठीक है, और हार्ट की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हार्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए डोनर की।
1: अच्छा जी, यानी जो वंशानुगत बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए?
2: वंशानुगत और ये दूसरी भी अलग अलग जो मेजर जो शरीर में जो अंग है ना उनकी बीमारी,
1: जैसे ये हार्ट की बताई आपने,
2: एक स्किन की बीमारी नहीं होनी चाहिए कि कुछ खुजली वगैरह की शिकायत हो या कोई स्किन पे इन्फेक्शन हो, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और सबसे जरूरी जो है मिर्गी के दौरे,
1: अच्छा मिर्गी के दौरे नहीं,
2: मिर्गी के दौरे की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन पांच छह कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो जिसमें कि हम देखते हैं कि मरीज पहले दिन ठीक से सोया है या नहीं, मरीज का ये तो नहीं है कि नहीं मरीज नहीं डोनर डोनर का ये तो नहीं है कि कुछ डोनर होते हैं वो कहते हैं हम तो हम जैसे ब्लड देखते हैं हमारे को चक्कर आ जाते हैं या हमारे इंजेक्शन लगते हैं चक्कर आ जाते हैं, जिसके ये इस तरह की वो बताएगा ना उसका हम ब्लड कलेक्ट नहीं करते।
1: डॉक्टर इसमें एक बात और पूछना चाहेंगे, अगर मान लिया बीपी है किसी की, वो दे सकता है?
2: बीपी का एक्चुअली क्या है, अगर बीपी कंट्रोल्ड है तो उसमें हम दवाई देखते हैं। कुछ दवाई अगर ले रहा है मरीज तो वो दे सकता है ब्लड, कुछ दवाई अगर मरीज ले रहा है तो वो जिस पेशेंट को ब्लड देंगे उसमें नुकसान कर सकते हैं, वो नहीं दे सकता। तो ज़्यादातर जो बीपी की दवाइयाँ हैं वो अगर मरीज ले रहा है और उसका बीपी नॉर्मल है तो वो ब्लड दे सकता है।
1: डॉक्टर साहब जिस तरह मान लिया ब्लड दे दिया उसने, तो ब्लड बैंक में फिर जहाँ खून इकट्ठा कराया जाता है ब्लड के, वहाँ इसकी क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, गतिविधियाँ होती हैं?
2: वहाँ पर हम पहले तो ब्लड जो डोनेट करते हैं, हम पहले तो डोनर का वेट देखते हैं
1: जी।
2: अगर डोनर का वेट 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए
1: जी।
2: तो अगर उसका 55 किलो से कम है वजन
1: जी,
2: तो हम उसका 350 ml ब्लड लेते हैं, और दूसरा है तो हम
1: जी
2: 450 ml ब्लड
1: जी
2: लेते हैं
1: जी।
2: और उसके बाद अगर कंपोनेंट बनाने होते हैं तो 500 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद वो ब्लड कलेक्ट करने के बाद पहले तो डोनर का हम कैसे ध्यान रखते हैं, ब्लड कलेक्ट करेंगे उसके बाद हम डोनर से पूछेंगे कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है
1: जी,
2: ठीक है। उसके बाद हम डोनर को जैसे आजकल फ्लेबोटमी चेयर होती है तो लेट के डोनेशन होती है
1: जी,
2: या फिर कैंप में है तो वैसे उसको फिर हम थोड़ी देर बैठने का कहेंगे। उसके बाद हम उसको रिफ्रेशमेंट देते हैं। अलग अलग ब्लड बैंक में अलग अलग होती है, जैसे फ्रूटी हो गया या कहीं पर जूस दे दिया
1: जी,
2: जो मीन ब्लड बैंक की पॉलिसी है उसके हिसाब से। तो वो हम डोनर को कहते हैं आप यहीं पे बैठ के पिए और थोड़ी देर आराम करो
1: जी,
2: ठीक है।
1: यानी ब्लड देने के बाद कुछ ना कुछ खाना पीना जरूरी है,
2: वो जरूरी है
1: जी।
2: तो वो जो है वो उस टाइम वो करेगा, तो उसी टाइम हम उसको डोनर को भी ऑब्जर्व करते हैं। वो जैसे जूस वगैरह लेगा थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट लगेंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा इसको एकदम चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे, ठीक है या नहीं
1: जी।
2: उसके बाद फिर हम डोनर को बताते हैं कि आपको ड्राइविंग नहीं करनी है आज के दिन,
1: अच्छा
2: ठीक है। और आज के दिन आपको अगर चक्कर वगैरह आए तो आपको बता देना है, और कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट नहीं करनी है। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार डोनर थोड़ा सा उनको, क्योंकि इसमें हम अबाउट 10% जो है 350 से 450 ml ब्लड लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको हल्कापन सा महसूस हो सकता है।
1: यानी 350 से 450 ml लिया जाता है,
2: तो थोड़ा सा हल्कापन, थोड़ा सा डिजीनेस महसूस हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ड्राइव नहीं करोगे।
1: डॉक्टर साहब एक चीज तो और देखते हैं, कई बार क्या होता है कि गाँव से जिस तरह मान लिया शहर में लग रहा है कैंप, गाँव से आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, वो गाड़ी लेके फिर इसका मतलब गाड़ी या तो दूसरे साथी को ले साथ में,
2: नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कहना मतलब उस दिन पूरा दिन या कुछ घंटे या किसी तरह?
2: पूरे दिन बेस्ट है कि पूरे दिन,
1: अच्छा अच्छा ना चलो। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार
2: ये बहुत रेयर है, पर फिर भी हम कहते हैं क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर थोड़ा सा उसको चक्कर आ गए तो थोड़ी मुश्किल
1: जी,
2: हो सकती
1: है। सही बात।
2: सिमिलरली अगर इसको ये और एक्सटेंड करके ये जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी पार कर रहे हो, अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, तो इस टाइप।
1: हाँ बात ये है ना डॉक्टर, मान लिया किसी जान बचाने आया है और खुद की जान दे बैठे तो कोई इसका फायदा तो है नहीं,
2: तो अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है। तो ये तो हम डोनर का करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ब्लड यूनिट होती है उसको हम रखते हैं अपने पास, फिर उसके हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसका एक तो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है
1: जी,
2: और उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने 5 टेस्ट बताए हुए हैं कि जो कि ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, तो उनके लिए हम टेस्ट करते हैं कि नेगेटिव है तो उसके बाद अगर वो नेगेटिव है और ब्लड ग्रुपिंग करके फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ब्लड बैंक के स्पेशल फ्रिज होते हैं।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ ये ठीक है, जो डोनर है मान लिया कि बताया जिस तरह अखबार में भी आपने बताया कि 50 बार भी 60 बार भी दे रहे हैं, तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो मान लिया पहली बार दे रहा जो कोई, एक या को बार बार दे रहा है, तो उसको किस किस सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे खाने पीने का अपना चाहे कोई ऐसा करना चाहिए कोई इस तरह
2: का? ऐसा कुछ नहीं है, वो हर एक बार जब डोनेट करेगा ना उसको का चेकअप करेंगे, फ्रेश चेकअप करेंगे, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा और वैसे डोनर ठीक होगा तभी हम लेंगे।
1: नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह हीमोग्लोबिन नॉर्मल की बात करो तो उसने नॉर्मल करने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई इस तरह खाना पीना कुछ करा जा सके उसने?
2: नहीं, वो नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कम है
1: जी
2: तो उसको वैसे ही हम उसको डेफर कर देंगे 6 महीने। हम ये नहीं कहते कि आप खूब सारा आयरन लो ताकि आप हर 3 महीने डोनेट कर सको। इस तरह हम फोर्स नहीं कर सकते डोनर को
1: जी।
2: तो वो अपनी मर्जी से, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है ना, वो ठीक फील कर रहा है तभी वो करेगा। हम कोई डाइट का ऐसे रिकमेंड नहीं करते कि आप आयरन लो या वो लो वो
1: नहीं
2: लो।
1: चलो ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो होगी वे आम होता हमारे।
2: पर वैसे क्या है कि अच्छा बैलेंस्ड हष्ट-पुष्ट खाना सबको ही खाना चाहिए, तो डोनर को भी खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, सब कुछ जो भी उसकी डाइट है, बैलेंस डाइट वो लेनी चाहिए,
1: वो लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब इस तरह मान लिया कल देना है ब्लड है,
2: हाँ
1: वो देने के लिए जाना है डोनर को,
2: हाँ
1: तो वो आज या कल खाने से वहाँ पहुँचने से पहले क्या क्या खा के जाए, क्या क्या करें,
2: कोई अलग सावधानी है? ब्लड डोनेट करने से पहले वैसे तो 4 घंटे पर, वैसे तो 4 घंटे कहते हैं पर एक्चुअली 1 या 1.5 घंटे पहले तक आपको एटलीस्ट 1 गिलास पानी और कुछ थोड़ा सा नाश्ता या खाना खाया होना चाहिए। खाली पेट ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए।
1: यानी आपका कहना मतलब खाली पेट?
2: तो ये जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ब्लड के उनसे ये अलग है। नॉर्मल टेस्ट में हम कहते हैं खाली पेट जाओ, इसमें आपको खाना जो भी डोनर होगा उसको खाना जरूर खाया होना चाहिए और उसको पानी जरूर 1-1.5 गिलास पिया होना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब जिस तरह गांव में ये चीज रहती है कि घी दूध है वो खाओ दबकर उससे आपका ब्लड भी बढ़ेगा, ये कर क्या मान लिया जिस तरह दूध पी के घर से आ सकते हैं, पानी की जगह कर दूध पी के आ सकते हैं जी? दूध दही है जैसे मान लिया,
2: कोई भी लिक्विड हो, पानी और दूध एक सा है, कोई फर्क नहीं है
1: जी।
2: बस ये है कि 2 चीज होनी चाहिए, एक कैलोरी का सोर्स जो खाना है, खाना वो जो है वो दूध में भी आ जाएगा, लस्सी में भी आ जाएगा
1: जी।
2: वैसे सॉलिड खाना लोगे उसमें भी आ जाएगा, जैसे रोटी वगैरह कुछ खा ली, और एक लिक्विड का सोर्स होना चाहिए, वो पानी हो गया, लस्सी में भी पानी होता है, दूध में भी पानी होता है, तो खाली पेट नहीं होना चाहिए, बस ये जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और रहती है, जैसे ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं, तो किन ग्रुपों की मतलब ज्यादा डिमांड रहती है?
2: हमारे यहाँ जो अनकॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो नेगेटिव वाले सारे अनकॉमन होते हैं।
1: अच्छा जी।
2: नेगेटिव जो है, जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन उसमें 1-5% एट द मोस्ट, इतना भी 5% तक भी नहीं पहुंचता, वो नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए वो कम होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे बी और ओ ब्लड ग्रुप ज़्यादा कॉमन है, ए ब्लड ग्रुप उससे थोड़ा सा कम, और ए भी सबसे कम मिलता है।
1: अच्छा जी।
2: तो ए बी ग्रुप की भी डिमांड ज़्यादा रहती है,
1: बी नेगेटिव बहुत कम है।
2: तो एक तो नेगेटिव हो गया, तो ए बी नेगेटिव तो सारे शॉर्टेज होते हैं।
1: अच्छा जी।
2: क्योंकि नेगेटिव जो हम जैसे 100 डोनर आएंगे तो उसमें से हमारे को 3 या 4 में मुश्किल से नेगेटिव मिलेगा
1: जी।
2: तो इसलिए ज्यादातर वो पॉजिटिव वाले होंगे, तो इसलिए नेगेटिव, अगर नेगेटिव जो पेशेंट है
1: जी,
2: ब्लड ग्रुप जिसका नेगेटिव है
1: जी,
2: ओ नेगेटिव ए बी नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव वाले चढ़ा सकते हैं, ए बी नेगेटिव को वो और ए नेगेटिव को ए नेगेटिव, तो इसलिए थोड़ी सी कमी रहती है उसकी।
1: अच्छा भाई जिस तरह हम ये देखा है, मान लिया कि पॉजिटिव ग्रुप वालों को कई बार डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपका पॉजिटिव हमें तो पास ये बहुत है, आप तो रहने दो, इस तरह भी कर दिया जाता है। और नेगेटिव वालों के लिए ये कर देते हैं डॉक्टर साहब कि भाई आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, जब भी हमें जरूरत हो आपके पास फ़ोन कर देंगे और आप आ जाइए।
2: हाँ जी।
1: तो इस तरह कर देते
2: हैं। हाँ जी।
1: तो फिर डॉक्टर साहब अगर मान लिया यही चीज़ें हैं उनको, वो मान लिया दूर है कोई इस तरह का, क्या उसको रखा नहीं जा सकता? उसका भी कितने दिन तक रख सकते हैं, यानी इसके ब्लड को लेकर?
2: एक्चुअली क्या है, ब्लड जो है अभी तो खैर हम कंपोनेंट बनाने लग गए हैं, उसका भी मैं बता देता हूँ। ब्लड जो होल ब्लड जो होता है, जो हम कलेक्ट करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में हम अलग नहीं करते
1: जी।
2: तो वो हम मैक्सिमम 35 डेज तक रख सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है,
1: यानी 35 दिन तक है वो, उसके बाद
2: 35 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए हम ज्यादा इकट्ठा करके रख नहीं सकते, वो वेस्ट होगा
1: जी।
2: तो इसलिए जो वो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे को करने पड़ते हैं। अगर हम अलग अलग हिस्सों में उसको सेपरेट करते हैं तो एक तो प्लेटलेट होते हैं जो डेंगू में पेशेंट्स को देते हैं
1: जी,
2: वो हम मैक्सिमम 5 दिन तक रख सकते हैं
1: जी।
2: वैसे तो उससे भी कम मीन्स 3-4 दिन तक ही रखते हैं, पर 5 दिन तक हम रख सकते हैं
1: जी।
2: ठीक है। और दूसरा जो है उसमें जो RBC होते हैं जिनसे कि हीमोग्लोबिन बनता है
1: जी,
2: वो हम 35 दिन।
1: अच्छा।
2: एक और पार्ट होता है उसका प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम 1 साल तक रख सकते हैं, तो उसकी शॉर्टेज यूजली कम ही होती है
1: जी। डॉक्टर साहब कई बार ये कहते हैं कि जो एक धारणा है गांव में भी और बल्कि शहरों में भी ये है, कई माता पिता ये कहते हैं ना ब्लड ना दे कमजोरी आ जाएगी, आ जाए, क्या ये चीजें सच है क्या?
2: देखो अगर किसी का हीमोग्लोबिन नॉर्मल है
1: जी
2: और वो ब्लड दे रहे हैं तो कोई कमजोरी नहीं आएगी, और हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसमें हम उनका ब्लड कलेक्ट करेंगे ही नहीं।
1: हाँ,
2: तो फिर इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 100 में से 3 या 4 डोनर ये कहेंगे पहली बार, खासतौर पर जिन्होंने डोनेट किया है, कि हमारे को थोड़ा सा हल्का हल्का सा लग रहा है। वो ज़्यादा नहीं होता, वो तो आप जो अगर आपने 2 गिलास गर्मी के मौसम में पानी कम पी लिया तो उसमें ही आपको थोड़ा सा लगने लग जाएगा, अदरवाइज कोई ऐसी कमजोरी नहीं आती। जितना भी फ्लूइड जाता है, प्लाज्मा जो होता है, वो 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है 24 घंटे में
1: जी।
2: नॉर्मल जो है ब्लड की वॉल्यूम रिस्टोर हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो पार्ट होता है जिनको हम RBC कहते हैं, वो 1 महीने में सारा कंप्लीट हो जाता है,
1: कंप्लीट हो जाता है।
2: वो हम सेफ्टी के तौर पे 3 महीने रखते हैं कि कभी किसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो इसलिए 3 महीने के बाद ही डोनेट करो
1: जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहें कि जिस तरह अपना ये हरियाणा का इलाका, हरियाणा इलाका में जो ब्लड की कमी है, मान लिया आप नॉर्मल से कम पाते ब्लड, तो उसमें किन किन में ज़्यादातर पावा जी? मान लिया एक तो पहले तो ये कह रहे महिलाओं में बहुत ज़्यादा कम होता है
2: ये, आप एनीमिया के बारे में पूछ रहे हो जिनको कि नॉर्मली टेस्ट करते और वो हीमोग्लोबिन कम
1: होता, हाँ, कम होता है।
2: वो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है
1: जी।
2: एक जो फीमेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है
1: जी,
2: ठीक है, और एक ओल्ड एज, ठीक है
1: जी,
2: और एक 10 साल तक के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे बहुत स्पीड से जल्दी बढ़ते हैं वो
1: जी।
2: तो उसमें सारा जो है मांसपेशी बनेगी और सारा का सारा ग्रोथ होती है, तो उसमें कई बार खून जो उसकी कमी हो जाती है।
1: जैसे आजकल ये जी स्कूलों में आयरन की गोलियां दी जाती हैं जी लड़कियों को भी, लड़कों में पहले तो ये कहा था कि बच्चों में, लड़कियों में होता है, लड़कों में नहीं होता, क्या इसका मतलब लड़कों में भी खून की कमी हो?
2: अच्छा, ग्रोथ होती है ना, तो ग्रोथ के साथ जो होता है इसकी कमी हो जाती है
1: जी,
2: क्योंकि सारी जो मसल हैं वो भी सारा ये हर एक चीज में ग्रोथ में आयरन की जरूरत होती है, तो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आयरन की कमी है, तो इसलिए आयरन देते हैं। ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें वो आयरन वगैरह हम देते हैं ताकि वो वाली कमी ना हो।
1: जिस तरह आपने बताया कि ताजे फल हैं या हरी सब्जियां हैं, दूध है, इन ये चीजें लेने, तो अगर ये लेते रहे आमतौर पर तो उसमें मतलब कोई कमी नहीं होगी कहना तो ये।
2: हाँ, बैलेंस डाइट है, पर फिर भी क्या होता है कि कुछ केसेस में कमी हो जाती है
1: जी। डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह मान लिया कभी जरूरत पड़ जाए, एक आदमी ने ब्लड दिया है और उसे कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर वो क्या करे? जब
2: ब्लड दिया है और उसको जरूरत पड़ जाए, तो अगर वो अलग अलग ब्लड बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, अगर वो वॉलंटरी ब्लड डोनर है
1: हाँ जी,
2: तो मोस्टली वो जाके अगर दिखाएगा तो उसको मोस्टली ब्लड अगर उनके पास होगा तो वो उसको देने की कोशिश करेंगे,
1: यानी हर बार सर्टिफिकेट मिलता हो डोनेट करता जो उसको, तो वो दिखाना पड़ेगा।
2: पर ये है कि उनके पास वो वाला ब्लड ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि डोनेट किया उसने, चलो उसने ABB ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया जो कि कम होता है, पर उस दिन अगर ब्लड बैंक में AB नहीं हुआ तो वही है ना कि मशीन से हम नहीं बना सकते, तो उसमें कई बार थोड़ा सा डोनर को भी लग सकता है कि मैंने डोनेट किया है, पर ये हमारे पास इसकी कोई ऑप्शन होती नहीं है
1: जी।
2: तो उसका वो है, और तो अगर वॉलंटरी ब्लड डोनर सर्टिफिकेट मिलेगा तो मोस्टली अगर वो जाते हैं उनके पास अवेलेबल है वो ब्लड अरेंज करवा के दे देते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये सर्टिफिकेट कितने दिन तक मान्य होता है? फिर कई बार तो ये कहते हैं कि 3 महीने तक मान्य या इतने तक मान्य है, तो कितने तक, या कभी भी मान लिया एक बार किसी ने दिया और उसे कभी जरूरत पड़ जाए तो कभी भी दिखा सकता है या क्या?
2: ऐसा इस चीज का कोई रूल नहीं है, अगर अच्छा उनके पास ब्लड होगा तो मोस्टली ब्लड देने की कोशिश करेंगे, बेशक वो 6 महीने के बाद भी लेके जाए
1: जी।
2: इसके कोई गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसी कोई है नहीं।
1: डॉक्टर
2: हम अपनी तरफ से एक्चुअली हम तो कोशिश करते हैं कि अगर वो जाए तो हमारे कोशिश तो ये रहती है कि अगर वो जाए तो हमारे पास अगर ब्लड हो तो हम वो सर्टिफिकेट भी नहीं देखेंगे, वैसे ही ब्लड देने की कोशिश करेंगे
1: जी,
2: अगर हमारे पास है।
1: अच्छा,
2: तो इस ऐसे हम उनको फोर्स नहीं करते कि जो ब्लड डोनर है वही अगर ब्लड डोनेट ही किया है तभी उसको मिलेगा
1: जी,
2: अगर हमारे पास स्टॉक में है तो हम उनको ब्लड दे देते हैं, हम फोर्स नहीं करते नहीं आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाओ या आपने डोनेट किया यही या नहीं किया है
1: जी,
2: क्योंकि वो इस तरह का हम फोर्स नहीं करते
1: जी। अब मान लिया एक डोनर का है लक्षा भी, वो क्या वो अपने रिलेटिव को भी दिला सकता है या नहीं?
2: रिलेटिव को
1: दिला सकता है, जैसे मान लिया उसने वो कर रखा है अपना डोनेट कर रखा है और उसका कोई रिलेटिव आ गया, उसके लिए भी कर सकता है, वो दिलवा सकता है उसको?
2: हाँ, रिक्वेस्ट कर सकता है वो। अच्छा, मिल जाएगा। अच्छा। पर इसी में मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अगर उसने डोनेट नहीं भी किया है तो भी वो अगर पहुंचता है तो हमारे पास अगर स्टॉक में, हमारा काम जो है सर्विस करना, ब्लड देना, हमारे पास स्टॉक में है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको ब्लड डोनेट करने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब डॉक्टर ने लिख के दे दिया तो हम अपनी तरफ से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें उसने डोनेट किया या नहीं किया है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास होगा हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे, जो भी वहाँ पे पहुँचता है जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको हम देने की कोशिश करें।
1: डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरह मान लिया उसने दिया है अब यहाँ रोहतक डोनेट किया और उसके ज़रूरत पड़ जाए, मान लिया उसको सोनीपत में ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर उसको क्या वहाँ से वो अपने सर्टिफिकेट के माध्यम से ले सकता है? एक तो मान लिया आप मानवता के तौर पर, डॉक्टरी तौर पर तो चलो ज़रूरत है उसको देते वैसे ही देते, अगर मान लिया वो दिखाए सर्टिफिकेट, क्या वो वहाँ भी काम का जाएगा उसका?
2: वो अलग अलग ब्लड बैंक की पॉलिसी होती है, पर हम अपने ब्लड बैंक में और ज़्यादातर गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जहाँ तक मेरे को पता है वो इंसिस्ट नहीं करते कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, उनके पास स्टॉक में हो वो ब्लड देने की कोशिश करते हैं।
1: जी ठीक है, यानी आप डोनर हो चाहे ना हो उनके पास है, डॉक्टर के पास है तो वो दे देते हैं।
2: हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमारे पास नहीं हो तो हम कहीं से अरेंज कर नहीं सकते।
1: हाँ ये भी बात सही है डॉक्टर साहब।
2: हाँ पर हमारे पास हो तो हम किसी को, और ये अभी जो है ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट ब्लड बैंक वो कोई रिफ्यूज नहीं करते।
1: जी तो नहीं डॉक्टर साहब एक चीज और मान के नाम चलना है, जिस तरह मान लिया ब्लड दिया उसका एक वो मान लिया कोई डोनर है, उसने थोड़ा वो अपने आप को ये मानता है कि मैंने अच्छा काम कर रखा है और मुझे जरूरत पड़ी है अब मुझे नहीं मिल रहा, तो थोड़ा उस तरह का महसूस करता है, क्या ये उसको उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपको इस तरह महसूस
2: उसके लिए? उसमें उसको ब्लड बैंक ऑफिसर से या वहाँ पे स्टाफ से किसी से मिल लेना चाहिए, वो उनको समझा दें किस कारण से ब्लड नहीं मिलने पा रहा है, क्योंकि मेन कारण हमारा यही है, हमारे पास अगर स्टॉक में नहीं है तो हम कहाँ से दे सकते हैं। पर यही मुश्किल है, पर ये आजकल कम मुश्किल आते क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो गए,
1: जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई।
2: भारत में आज के दिन मैं कुछ समय पहले मेरे को मैं पढ़ रहा था तो 146 लाख यूनिट जो हैं वो साल में डोनेट होती हैं, तो रिक्वायरमेंट जो उससे थोड़ा सा ही वो
1: कम है, मतलब
2: कम है, तो वो मोस्टली दिक्कत ही आती है नहीं।
1: जी हाँ सर, दिक्कत आओ तो ये आओ कि नेगेटिव की आती है ज़्यादातर,
2: नेगेटिव और स्पेसिफिक उसकी कई बार दिक्कत आ जाती है हमारे को कि नेगेटिव जो कम होता है स्टॉक में।
1: जी
2: क्योंकि डोनर ही कम है नेगेटिव वाले, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।
1: तो ज़्यादातर क्या ये पॉजिटिव ज़्यादा है जिसमें, अगर वो देखें तो आपने जिस तरह बताया आंकड़ों के अनुसार तो पॉजिटिव ज़्यादा है,
2: वही है, अगर 100 डोनेट करेंगे तो उनसे 97 के करीब जो है वो पॉजिटिव होंगे, 3 के करीब नेगेटिव होंगे। तो इसलिए किसी का अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको हम पॉजिटिव दे नहीं सकते
1: जी,
2: तो उसको नेगेटिव ही देना पड़ेगा, तो उनको थोड़ी सी कई बार मुश्किल आ जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी मतलब होना चाहिए, ब्लड देने के लिए जागरूकता आनी चाहिए।

0: या युवाओं को या जिनको भी है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेना चाहिए, तो किसके लिए क्या करना चाहिए, कोई आप अपनी तरफ से संदेश दोगे?
1: उसके लिए यही है, एक तो उनको ये ध्यान रखना है कि ब्लड डोनेशन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल चेकअप करके करते हैं, ठीक है, कोई इससे कमजोरी वगैरह नहीं आती। हाँ, उनका जो फॉर्म है उसमें उनको सब कुछ सही सही विवरण हर एक चीज़ का देना होता है और वो सारा, और इतने अदरवाइज अगर डोनर हेल्दी है तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती। खाना खा के उसको आना चाहिए, डोनर को खाना और मिसहाइड्रेट करके पानी पी के फिर आना चाहिए, और बाद में थोड़ी देर आधे घंटे, बेशक कितनी जल्दी हो आधे घंटे वहाँ पे जहाँ ब्लड डोनेट किया वहाँ पे आसपास बैठा रहे कि थोड़ा वो जो है उसको ऑब्जर्व कर सके, उसके बाद गाड़ी नहीं ड्राइव करनी। और ये सेफ है, और ये जो भी ब्लड दे रहे हैं, जो एक्सीडेंट के केस हैं, थैलेसीमिया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या है कि उनको एक एक महीने 15-15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो पेरेंट्स तो इतना ब्लड कहाँ से लाएंगे, तो उनके लिए ये ब्लड दिया जाता है। ट्रामा के केसेस है उनके लिए ब्लड दिया जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, हेमरेज हो जाती है, जो 2-3 यूनिट का ब्लड लॉस हो जाएगा, वो एकदम कहाँ से अरेंज करेंगे उनके लिए। तो वो जो डोनेट कर रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा है, और ये जब डोनेट करें तो उनको एक खुशी का अनुभव होना चाहिए कि हमने एक एक मनुष्य की जान बचाई है इस ब्लड से, तो ये बहुत जरूरी है और सेफ होता है
0: जी,
1: तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती।
0: तो श्रोताओं, डॉक्टर कुलवंत सिंह जी ने देखो कितनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी है, तो एक बात ये कहनी पड़ेगी, जो स्वस्थ आदमी है उसने रक्तदान जरूर करना चाहिए, और सुबह जिस तरह जाओ अपना खा पी करने, और ये है कि वह खाली पेट नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाकर ने अपना रक्तदान कर दे, तो इससे क्या है कि वह एक और जीवन को हम बचा रहे हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर कुलवंत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत, जिसमें आज आपने सुना डॉक्टर कुलवंत सिंह के साथ की गई भेंटवार्ता, विषय था रक्तदान के लाभ और सावधानियां। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा हो, हम अपनी सभी आशाओं को पूरा कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। शरीर के साथ साथ मानसिक स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि हम सबका स्वभाव ऐसा हो जिससे दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ आएं, दूसरों का जीवन खुशियों से भर जाए, ना कि हम दूसरों के जीवन में दुख का कारण बने। क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हमारे कारण किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, खुशी होती है। जब हम किसी के काम आते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रक्तदान करना। हम अपने रक्त का दान करके किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर रक्त के बिना अधूरा है। रक्त के जरिए ही शरीर के सभी हिस्सों में सुचारू रूप से ऑक्सीजन जाता है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम में कमज़ोरी आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हम बार बार बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। हमारे शरीर में बहने वाले रक्त को कई ग्रुप्स में बांटा गया है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ग्रुप बी, ग्रुप ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हम सब ने जाना है कि आज विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, पर उसके बावजूद भी आज तक रक्त का कोई विकल्प नहीं मिल पाया है। इसलिए जब भी कभी खून की कमी किसी मरीज को होती है तो उसकी पूर्ति केवल और केवल मनुष्य के द्वारा दिए गए रक्त से ही हो सकती है, और अगर समय पर संबंधित ग्रुप का रक्त ना मिले तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। हमारे द्वारा दिया गया खून किसी अनजान व्यक्ति की जान बचा सकता है। दान किए गए रक्त से थैलेसीमिया और कई अन्य कारणों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है, और एक व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है, उसे खुशहाल जीवन दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर रक्तदान करें। जब भी कभी रक्तदान करें उससे पहले भरपूर मात्रा में डाइट लें, लिक्विड ज़रूर पिएं, साथ ही रक्तदान करने के पश्चात आराम करें, भारी काम करने से बचें, साथ ही ड्राइविंग करने से भी बचें। अगर बात करें कि हम रक्तदान किस आयु में दे सकते हैं तो 18 से 60 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति कभी भी रक्त का दान कर सकता है, और हर 3 महीने के बाद हम रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान करने के लिए आगे आए ताकि किसी दूसरे की ज़िंदगी को बचाया जा सके और अपने जीवन के सही मायनों को हम सही रूप से चरितार्थ कर सकें।

श्रोताओं, गर्मी अपनी चरम पर है और इस समय पर हमें लू से अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में लू या सन स्ट्रोक से अक्सर आम जन को बीमार होते देखा गया है। जिस तरह से जब हम सर्दियों में घर से बाहर जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि पूरी तरह से हमने कपड़े पहने हों, इसी तरह से गर्मी के मौसम में भी अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। लू और सनस्ट्रोक से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब भी घर से बाहर जाएं पूरी सावधानी बरतें। मसलन पूरी बाजू के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले, कोशिश करें कि कपड़े सूती और हल्के रंग के हमने पहने हों। धूप में निकलते समय संभव हो तो छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें या फिर कैप या कपड़े से अपने सिर को ढक कर रखें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पीने के पानी का हमारा साथ होना बेहद ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर जाएं तो पानी पीकर निकलें और अपने साथ पानी की बोतल कैरी ज़रूर करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम पानी पी सकें, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है, पसीना ज़्यादा आता है और गर्मी से बचाव के लिए पेय पदार्थों का लेना बेहद ज़रूरी होता है। इस समय पर हमें ठंडे पानी का सेवन ज़्यादा करने से बचना चाहिए, नॉर्मल या घड़े के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस समय पर पानी से भरपूर जो फल और सब्जियां आती हैं उनका इस्तेमाल करें। घर से बने खाने को ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि वो संतुलित होता है और साफ़ सफाई से बनाया जाता है। फास्ट फूड खाने से बचें। साथ ही डिहाइड्रेशन होने की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जब भी कभी चक्कर आने या ज़्यादा गर्मी लगने के संकेत मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा बताए गए एहतियात को ज़रूर बरतें। अपने साथ साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल भी रखना हम सब की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। अपने घर के आसपास, घर की छतों पर, दीवारों पर खुले बर्तन में पानी ज़रूर रखें, ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सके और इस तपती गर्मी से खुद को बचा सके। अपने आप को बचाना तो हम सब चाहते हैं, पर ज़िंदगी सही मायने में तभी जी जा सकती है जब अपने साथ साथ अपने अपनों का, अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का ध्यान भी हम रखें, क्योंकि जब पेड़ की घनी छाया में हम बैठते हैं तो हमारे मन को, हमारे तन को सुकून ज़रूर मिलता है। तो ज़रूरी है कि उस सुकून को पाने के लिए हम अपने द्वारा किए गए कामों को सही से करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से करें, तभी अपने ज़िंदगी के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी सुखद बना पाएंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: तो अब समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं समेटने का। आप सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
6: भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री

0: देशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए

0: यार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार हैं सुंदर सिंह और सुमेर सिंह आर्य।
1: ओके बोलो।

ஜங்கத்தான ஓ

इसके दूत मेरा सिर उठे कह शर्मा जी कह शर्मा।

0: ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಮ್ಮನ್ನು ರಮಕರೆ
1: इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे सुंदर सिंह और सुमेर सिंह आर्य। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मनभावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मोहम्मद रफी की आवाज़ में सजे गीत के साथ फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, संगीत शंकर जयकिशन का और शब्द रचना थी नीरज की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले अमित कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा योगेश ने, संगीत दिया राजेश रोशन ने, बातों बातों में फिल्म से।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

ये गीत आप सुन रहे थे दर्पण फिल्म से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गोरा और काला फिल्म से। गीत और संगीत एक बार फिर आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

वो सात दिन फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। अगला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा निदा फाजिली ने।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना हमारा ख़ानदान फिल्म से। इस गीत को लिखा फारूक केसर ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं दाग फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, साहिर का लिखा गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सौदागर फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं, जोनी मेरा नाम फिल्म से।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में राजेंद्र किशन का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, जॉनी मेरा नाम फिल्म से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 10:05 पर अंग्रेज़ी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना।

0: said that its medical team and the team management advised Siraj a period of rest as part of his workload management program. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:32 हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
3: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
2: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे,
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा,
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त

महाराष्ट्र से शैलेशपुरी, सोनमपुरी और धनुषपुरी हैं। ये पत्र हमें मिला है कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान अनुष्का चक्रधारी का, शालर पहलगाम कश्मीर से परिजादा मेहरजुद्दीन, केशरदीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक श्याम कुंवर, दीपक प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर, बलियाली हरियाणा से हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार और गर्विश बंसल, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी ईशिका और तेजल यादव। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको

का गाया राजा रानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही आज का संपन्न होता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
8: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: दीदी नौकरी लग गई
2: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग
1: हाँ दी नया मोबाइल
2: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो
1: पर दीप
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
2: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई राम राम भाइयों आज खेत खलिहान में जिक्र कराएंगे सोयाबीन की काश्त पे भाइयों एक ये दलहनी फसल है अगर हमें जो परंपरागत खेती करा हरियाणियों का इसका जो धान और गेहूं का जहां वो चालन चक्कर चल रहा है उसकी जगह अगर मान लिया कई बार हमें ये दलहनी फसलें लगा लिया हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा एक तो जो फसल चक्कर है वो टूट जाए दूसरा ये है कि जो दलहनी फसल लगाने तो हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और ज़मीन की ताकत बढ़ जाए तो इसलिए ये सिफारिश करी जाए कि भाई दलहनी फसल भी लगा लेनी चाहिए मतलब गेहूं और धान का चक्कर न छोड़ के और दूसरी फसलें जो लगा ले उसमें ज़्यादा फायदा और दलहनी में तो और भी ज़्यादा फायदा है तो बात सोयाबीन ही करा सोयाबीन में भाई वो तीन चार किस्में बहुत बड़ी या बढ़िया किस्में हैं एक किस्म है PK 416 या बहुत बढ़िया किस्म है सारा हरियाणा में इसकी बिजाई की सिफारिश करी जाए और इसकी बढ़वार जो वह सीमित है इसके दाने हैं वो मध्यम हैं अंडाकार हैं पीले हैं और भूरे रंग की इनकी नाभी हुए हैं इस किस्म में मोजेक रोग के प्रति असहनशील है और राइजोटोकोनिया जो पत्ता इसमें अंगमारी और जीवनमारी है वह इसमें उसके प्रति रोग रोधी है और इसकी जो पकने की अवधि है वह 120 से 125 दिन रही है और औसतन पैदावार 10-12 क्विंटल के लगभग एक एकड़ में हमने मिल जाए किस्म है PK 416 एक और किस्म है PK 472 यह भी बहुत बढ़िया किस्म है और अच्छी पैदावार देने वाली किस्म से है इसकी पत्तियों का जो रंग है वो गहरा हरा हुआ है बढ़वार इसकी सीमित है और इसका दाना अच्छा मोटा है चिकना है पीला है और भूरे रंग की इसकी नाभी और यह किस्म फड़ी चटकन के लिए है सहनशील है और इस किस्म की बात करें तो इसमें मोजेक है और राइजोटोकनिया है पत्ता अंगमारी है ये रोगों के प्रति यह रोगरोधी है और जो इसकी पकन की अवधि है वह उसकी तरह है जो 416 थी उसकी तरह है ये 120 से 125 दिनों पर तैयार हो जाए और पैदावार भी हमने यह 10 से 12 क्विंटल लगभग एक एकड़ में दे दिए हमें एक और किस्म इसमें 564 PK 564 यह बहुत बढ़िया किस्म है पूरा हरियाणा में इसकी बिजाई की सिफारिश करी जाए इसका तना अच्छा सख्त है बढ़वार भी इसकी सीमित है दाना मध्यम आकार का अंडाकार है पीला है गहरे भूरे रंग की इसकी जो नाभी हुआ है और इस किस्म में जो मोजेक है और जीवाणु है विस्फोट रोग की प्रतिया रोग रोधी है भाई और राइजोटोकनिया जो पतंगमारी रोग है उसके प्रतिया सहनशील है और इसके पकड़ की अवधि भी जो दूसरी किस्में हैं 416 और 472 तो यह PK 564 की भी 120 से 125 दिन में पक्कन तैयार हो जाए है और जो इसकी औसतन पैदावार है हमने 10 से 12 क्विंटल लगभग एक एकड़ में मिल जाए और भाई बात इसमें और भी कराएंगे लेकिन उससे पहले आपने एक रागनी सुनवाएंगे गायक कलाकार रहेंगे धर्मपाल जाखोली वाला और उनके साथी
6: मेरे साथ।

तरलोकी के नाथ बात सुन ना एक किसे के लाल दिए लाल दिए तो ये मोती।

जागती मैं सपने आवे मैं पांद सराने हो आए तो सपनी कोए बुझनिया ना मैं देखिए कली रो कई कई रोज बीत जा खाली

भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे ओम प्रकाश और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे सोयाबीन की काश्त पे। भाई इसकी जो तीन किस्में बताई थी आप ही, तो PK 416, PK 472 और PK 564, तो ये तीन किस्में हैं, इनमें से कोई एक किस्म लगा लो। और हाँ ध्यान ये रखें, जून के आखिर से लेकर और जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी बिजाई कर लें, क्योंकि फिर आगे बरसात आ जाएगी, बरसात में इसमें रापड़ ला गई, रापड़ में फिर दिक्कत होगी, जमाव नहीं होगा इसमें। हाँ बीज की बात है, जहाँ तक इन तीनों किस्मों में हमने 30 किलो बीज लेना है और लाइना में इसकी बिजाई करनी है। लाइन से लाइन का फासला हमने 1.5 फिट का रखना है और 2.5 सेंटीमीटर गहरा हमने बीज छोड़ना है इसमें, ये ध्यान रखना है। और 22 किलोग्राम तो इसमें यूरिया लगेगा और 4 कट्टे इसमें सिंगल सुपर फास्फेट के लगे, ये बिजाई के टाइम पर हमने इसमें दे देने। और इस तरह वह नाइट्रोजन पूरे दे, क्योंकि जिस तरह बताया था दलहनी फसल, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, तो हमने ये ध्यान रखना है। हाँ इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना भाइयों, दलहनी फसल है तो इसमें हम सोयाबीन का जो राइजोबीम का टीका वो लगा लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। एक तो जिस तरह ये बता दिया कि वह जो नाइट्रोजन वो 22 किलो लगेगी इसमें, और राइजोबीम का टीका लगा लें जब है इसमें, तो ये तो आपने जिस तरह बताया ये जीवाणु टीका है, ये जीवाणु टीका तो हमने ज़रूर लगा लेना चाहिए, खासकर अपनी जो दलहनी फसल है उनमें। वैसे तो हर एक फसल में, चाहे खाद्य फसल है, चाहे नकदी फसल है, चाहे तिलहनी है, चाहे दलहनी, कोई सी भी फसल है, हर फसल में लगा लेना चाहिए, लेकिन हमने जो सोयाबीन है या दलहनी फसल है इसमें तो ज़रूर लगा लेना चाहिए। और ये बताया था कि जो टीका लाना है अपने, जो फसल का नाम दे कर लाना है टीका वहाँ से, और फिर उसको लगा करने, और सबसे जो भी आपने उपचार करने सारे उपचार करके सबसे बाद में हमने राइजोबीम का टीके का उपचार इसका करके ने और वो लगा देना है, फिर उसके बाद आपने इसकी बिजाई कर देनी है। तो इस तरह हमें इसकी बिजाई करेंगे, बीज की पूरी मात्रा लेंगे और टाइम का, जिस तरह भाइयों आपने बता दिया कि भाई हमने इसका जो है कि जून के आखिर से लेकर नर जुलाई के फर्स्ट पहला सप्ताह तक हमने इसकी बिजाई कर लेनी है, यानी बरसात मौसमी जो ये आओगी बरसात है उससे पहले पहले हमने इसमें ये बिजाई कर लेनी है। तो ये हमने पूरा ध्यान रखना है और बीज की मात्रा आपने पूरी लेनी है, 30 किलो इसमें बीज लेना है हमने 1 एकड़ के लिए। लाइन में बिजाई करनी है, लाइन से लाइन का फासला हमने 1.5 फुट या 45 सेंटीमीटर रखना है, और इसमें 2.5 इंच पे हमने बीज

0: हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
1: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इस

0: हाँ, ये एक जरूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका, हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं, जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं, उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूंकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं, और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है, और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती, और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की जरूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की जरूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके

0: माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है।
1: तो श्रोताओं, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें अवश्य बताइए। और इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। और यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और अब मुझे यानी प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की शाम की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साथी हर्ष का नमस्कार। आप सभी का हमारे दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में हार्दिक स्वागत है साथियों। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक ऐसे दिवस के बारे में बात करेंगे जिसमें विविधता में एकता ही मानवता सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी से संबंधित विषय जो है हमारा, जो दिवस हम मना रही हैं, वो है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हर वर्ष 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस मनाने के लिए जो है रखा गया है। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ आज का विश्व तेज़ी से वैश्विक होता जा रहा है, ऐसे में अलग अलग समाजों और संस्कृतियों के लोगों के बीच संवाद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और जीवन शैलियां हैं और हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब अलग अलग भिन्न सभ्यताओं के लोग एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करते हैं, तब शांति, भाईचारा और एकता का वातावरण बनता है। युवाओं की इस दिशा में विशेष भूमिका है साथी। नई पीढ़ी की विभिन्न संस्कृतियों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें डिजिटल माध्यमों और सामाजिक मंचों का उपयोग सकारात्मक संवाद के लिए करना चाहिए। आज के समय में जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब संवाद ही वह माध्यम है जो लोगों और देशों को एक दूसरे के करीब लाता है। और बातचीत हमें सिखाती है कि मतभेद होने के बावजूद हम सम्मान और सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह दिवस साथ ही साथ हमें याद दिलाता है कि भिन्नताएं हमें विभाजित नहीं करती, बल्कि हमें सीखने और आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करती हैं। और संवाद वह पुल है जो अलग अलग संस्कृतियों, सभ्यताओं को जोड़ता है। और जब विचार मिलते हैं, तभी शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। और सभ्यताओं का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है बुधवार का दिन और आज के दिन हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम करियर काउंसलिंग। और आज की करियर काउंसलिंग का विषय है पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। और जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत कौशिक, और इनसे बातचीत कर रही हैं अर्चना मिश्रा। लीजिए सुनिए यह पुनः प्रसारित बातचीत।
1: सभी युवा श्रोताओं को नमस्कार। हमारे युवा श्रोता जानते हैं कि बुधवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, और इस विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को बुलाते हैं और आप तक जानकारी मुहैया करवाते हैं कि किस विशेष क्षेत्र को अगर आप चुनते हैं किसी भी, तो उसमें आपके लिए क्या क्या रोजगार की संभावनाएँ बनती हैं, क्या आपके लिए रोजगार विकल्प बनते हैं। तो इसी क्रम में आज हमने विषय चुना है पशु चिकित्सा विज्ञान युवाओं के लिए एक सफल करियर विकल्प। हमारे साथ स्टूडियो में जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनका नाम है डॉक्टर अक्षत कौशिक। तो अक्षत, आपका हमारे युवा संसार कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही हम करेंगे कि आज के समय में पशु चिकित्सा विज्ञान को युवाओं के लिए एक उभरते हुए और सफल करियर के रूप में क्यों देखा जा रहा है?
2: देखिए, भारत जैसे देश में पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के करोड़ों किसान दूध, अंडा, मांस, ऊन और अन्य पशु उत्पादों से अपनी आय प्राप्त करते हैं। भारत आज दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर है।
1: अच्छा,
2: ऐसे में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यही काम पशु चिकित्सक करते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान केवल पशुओं के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोगों की रोकथाम, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, एनिमल वेलफेयर और मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग भी शामिल है। इसी कारण आज यह क्षेत्र युवाओं के लिए एक सम्मानजनक, स्थिर और संभावनाओं से भरा हुआ एक करियर विकल्प बन गया है।
1: जी, बेहतर बात आपने बताई है। अच्छा, ये और बताइए अक्षत कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत करती हैं?
2: जी, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुपालन आय का एक स्थायी साधन है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन या पोल्ट्री पर निर्भर करती है। यदि पशु स्वस्थ होंगे तो दूध उत्पादन बढ़ेगा, अंडा उत्पादन बेहतर रहेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। यहाँ पशु चिकित्सकों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: अच्छा।
2: आप देखें, वे पशुओं का इलाज करते हैं, टीकाकरण करते हैं, पोषण संबंधी सलाह देते हैं और रोगों की रोकथाम में भी उपाय बताते हैं।
1: अच्छा।
2: इस प्रकार पशु चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देती हैं।
1: अच्छा, ये भी अच्छी जानकारी आपने बताई है। अब ये बता दीजिए डॉक्टर साहब कि यदि कोई विद्यार्थी पशु चिकित्सक बनना चाहता है तो 12वीं के बाद उसे क्या करना चाहिए, और एक हम सुनते हैं BVSC और AH, ये क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से बच्चे इसमें एडमिशन लें और आगे जाएं?
2: जी बिल्कुल, पशु चिकित्सक बनने के लिए एक विद्यार्थी को BVSC और AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री नामक डिग्री करनी होती है।
1: अच्छा।
2: यह कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप होती है।
1: अच्छा।
2: इस दौरान विद्यार्थी को अनेक पशुओं के विषय जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, एनिमल प्रोडक्शन मैनेजमेंट और वेटनरी पब्लिक हेल्थ जैसे 17 सब्जेक्टों का अध्ययन किया कराया जाता है।
1: अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है इसका मतलब। पूरी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति पशु चिकित्सक
2: जी। और साथ ही इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों में पशुओं के उपचार करना और किसानों के साथ काम करने का व्यवहारिक अनुभव मिलता है।
1: अच्छा।
2: इस प्रकार यह कोर्स विद्यार्थियों को एक पूर्ण प्रशिक्षित पशु चिकित्सक बनने के लिए तैयार करता है।
1: जी। अच्छा, इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए BVSC और AH में प्रवेश के लिए?
2: इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से करी होनी चाहिए, साथ ही उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषय होना आवश्यक है।
1: जी।
2: आप देखें कि प्रमुख रूप से जो पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में जो एडमिशन है वो नीट परीक्षा के मार्क्स के बेसिस पे होता है। भारत में पशु चिकित्सा कॉलेजों की सीटें 2 भागों में बटी हुई हैं। जैसा कि हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया कोटा के द्वारा ये एडमिशन किए जाते हैं जो कि भारत के 15% सीटों का भाग है।
1: अच्छा।
2: और अगर हम देखेंगे दूसरा है राज्य लेवल पे, राज्य लेवल पे 85% जो सीटें हैं महाविद्यालयों की वो राज्य लेवल पे भरी जाती हैं।
1: अच्छा।
2: राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय या फिर वेटनरी विश्वविद्यालयों के द्वारा।
1: अच्छा, तो ये तो हमारी इस बात का जवाब आपने दे दिया। अक्सर लोग ये समझते हैं डॉक्टर अक्षत कि पशु चिकित्सक का काम केवल पशुओं का इलाज करना है, क्या इसका संबंध मानव स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है?
2: जी हाँ, पशु चिकित्सा विज्ञान का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे रोग होते हैं जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकते हैं जिन्हें की जूनोटिक रोग कहा जाता है।
1: बिल्कुल, जूनोटिक दिवस भी हम लोग मनाते हैं, बहुत
2: जी,
1: सारे
2: जी।
1: अपने कार्यक्रम हम रेडियो से प्रसारण करते हैं जूनोटिक डिजीजेस के बारे में।
2: जी
1: बिल्कुल ठीक है। हाँ।
2: जैसे कि रेबीज, ब्रुसेलोसिस और एवियन इन्फ्लुएंजा।
1: जी।
2: साथ ही पशु चिकित्सक इन रोगों की पहचान, नियंत्रण और रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा दूध, मांस और अन्य जो पशु उत्पादक हैं उनकी गुणवत्ता की निगरानी भी पशु चिकित्सकों द्वारा की जाती है।
1: जी।
2: इस प्रकार पशु चिकित्सा विज्ञान मानव स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
1: अच्छा, ये और बता दीजिए अक्षत कि सरकारी क्षेत्र में पशु चिकित्सकों के लिए किस प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं?
2: जी बिल्कुल, सरकारी क्षेत्र में पशु चिकित्सकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकार में अगर देखा जाए तो पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिलती है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा संगठित राज्य फार्म, पोल्ट्री फार्म, सीमन स्टेशन और रोग जांच प्रयोगशालाओं में भी पशु चिकित्सकों की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा।
2: वहीं वैक्सीन प्रोडक्शन लेबोरेटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और चिड़ियाघरों में भी पशु चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में यह एक स्थिर सम्मानजनक करियर प्रदान करता है।
1: अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब, और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि केंद्रीय स्तर पर जैसे सेना या शोध संस्थानों में पशु चिकित्सकों के लिए क्या अवसर होते हैं?
2: जी बिल्कुल, केंद्रीय स्तर पर भी पशु चिकित्सकों के लिए कई महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे कि हम देखें उदाहरण के लिए रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स जो कि आर्मी की एक इकाई है, उसमें पशु चिकित्सक सेना के घोड़ों, कुत्तों और ऊंटों की देखभाल और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही BSF और ITBP जैसी इकाइयों में भी पशु चिकित्सक असिस्टेंट कमांडेंट की पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं देते हैं।
1: अच्छा, पुलिस में भी इस तरह की सेवाएं दे सकते हैं ना?
2: जी बिल्कुल, उनके पास जो पुलिस के जो डॉग्स होते हैं, कैनाइन यूनिट्स होती हैं, उनमें पशु चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं।
1: जी। अच्छा, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षण या अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या संभावनाएं बनती हैं डॉक्टर अक्षत?
2: यदि किसी विद्यार्थी को रुचि शोध या शिक्षण में है तो वह बीबीएससी एंड एएच जो कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के बाद एमबीएससी और पीएचडी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: इसके बाद वह पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक यानी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: इसके अलावा विभिन्न शोध परियोजनाओं, प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थानों में भी काम करने के अवसर उन्हें मिलते हैं।
1: ये भी अच्छी जानकारी है हमारे युवा श्रोताओं के लिए। और निजी क्षेत्र की बात करें तो पशु चिकित्सकों के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं?
2: जी बहुत अच्छा, निजी क्षेत्र में भी पशु चिकित्सकों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, डेयरी उद्योग, पोल्ट्री उद्योग और जो फीड उद्योग है उसमें भी पशु चिकित्सकों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा बीमा कंपनियां, सहकारी डेयरी संस्थाएं और कई कॉरपोरेट संस्थानों में भी पशु चिकित्सकों को नियुक्त करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यदि हम भारत में पशु चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो देश में कुल कितने पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं और विशेष रूप से हरियाणा में कौन कौन से कॉलेज इस कोर्स की पढ़ाई करवाते हैं?
2: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि भारत में पशु चिकित्सा शिक्षा के लिए कितने संस्थान उपलब्ध हैं। आप देखें कि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर लगभग 85 पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं।
1: अच्छा।
2: जिनमें की लगभग 71 कॉलेज जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं और अभी कुछ जो कॉलेज हैं वो अस्थायी रूप से उनको अनुमति दी गई है। और हम देखें कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में अभी 6 वेटनरी या फिर हम कहें पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय हैं
1: जहां से विद्यार्थी शिक्षा पा सकते हैं। अच्छा, जितनी भी संख्या आपने बताई है डॉक्टर अक्षत, वो ये बताती है कि ये कोर्स कितना महत्वपूर्ण है।
2: जी।
1: है ना, आगे बढ़े तो आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत से युवा ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पशु चिकित्सा की पढ़ाई करने के बाद विदेशों में भी नौकरी या शोध के अवसर उन्हें मिल सकते हैं, यदि हाँ तो इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहती है?
2: पशु चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विदेशों में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कई विकसित देशों में पशु चिकित्सकों की मांग अभी लगातार बढ़ रही है।
1: अच्छा,
2: जैसा कि देखा जाए कि डेयरी और पालतू पशु चिकित्सा के क्षेत्रों में अभी पशु चिकित्सकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि कोई विद्यार्थी विदेश में काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसे भारत में बीबीएससी एंड एएच जो कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री प्राप्त करनी होती है। इसके बाद वह जिस देश में काम करना चाहता है या चाहते हैं वहां की लाइसेंसिंग प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी होती है।
1: जी।
2: अधिकांश देशों में इसके लिए कुछ अतिरिक्त परीक्षाएं भी देनी होती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि वहां नौकरी के लिए कुछ देशों में टॉफल या आईएलटीएस जैसी परीक्षाएं भी देना आवश्यक है।
1: अच्छा।
2: साथ ही कुछ देशों में पशु चिकित्सकों को लाइसेंसिंग परीक्षा भी पास करना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वहां की पशु चिकित्सा प्रणाली के अनुसार काम करने योग्य हैं।
1: जी।
2: इन परीक्षाओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, शोध कार्यक्रम और पशु चिकित्सा क्लिनिकों में आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार सही योजना, तैयारी और आवश्यक परीक्षाएं पास करने के बाद पशु चिकित्सा के क्षेत्र में विदेशों में भी बहुत अच्छे अवसर वो पा सकते हैं।
1: जी, बेहतरीन जानकारी है हमारे सुनने वालों के लिए। अच्छा अक्षत, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं तो ये जो क्षेत्र है पशु चिकित्सा का, इस क्षेत्र में भी क्या उनके लिए रोजगार संभावनाएं हैं और अगर हैं तो आप इसे किस तरह से देखते हैं?
2: आज अगर देखा जाए कि तो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान कर रहे हैं।
1: अच्छा,
2: पहले ये माना जाता था कि ये क्षेत्र सिर्फ शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आज तकनीक और सुविधाओं के विकास के कारण महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत सफलतापूर्ण कार्य कर रही हैं। आज देश के कई पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बड़ी संख्याओं में छात्राएं बीबीएससी एंड एएच कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं और वे पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं।
1: ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है?
2: जी, अगर वैसे देखा जाए तो महिलाएं आज के टाइम पे पेट क्लिनिक अपना करती हैं तो उसमें उन्हें खुद जाने की जरूरत नहीं होगी, तो उनका पेट या फिर उनका जो इलाज करवाने वो आ रहे हैं तो वो खुद उनके पास आएंगे, तो इसलिए उनके लिए वो चुनौती काफी कम हो गई है।
1: अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे कि आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान में अपना भविष्य देखते हैं?
2: मैं सबसे पहले उन युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको पशुओं से प्रेम है, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के साथ जुड़कर काम करने में रुचि है और समाज की सेवा करने की भावना रखते हैं तो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। आज के समय में यह क्षेत्र केवल पशुओं के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें अनुसंधान, शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डेयरी और पोल्ट्री उद्योग, पशु पोषण और बायोटेक्नोलॉजी तथा उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। भारत में पशुधन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले समय में हम देखें तो प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की मांग और भी बढ़ेगी। इसलिए यदि युवा इस क्षेत्र में समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें न केवल स्थिर और सम्मानजनक करियर मिलेगा बल्कि वे किसानों की आय बढ़ाने, पशु कल्याण को बढ़ावा देने और देश की खाद एवं पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। इसलिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य को वे स्पष्ट रखें, सही मार्गदर्शन लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। पशु चिकित्सा का क्षेत्र आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर अक्षत कौशिक। अच्छा, ये तो सारी बातचीत आपके साथ हो गई। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे गेस्ट हैं तो आपकी पसंद का एक गीत हम युवा श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आपको बहुत पसंद है?
2: जी, मुझे सिर्फ गीत सुनना ही नहीं बल्कि कभी कभी गीत गुनगुनाना भी पसंद है।
1: जी, ये बहुत तो अच्छी बात है। कौन सा गीत आप हमारे युवा श्रोताओं के लिए गाना चाहेंगे?
2: एक गाना है प्रीत जहां की रीत सदा, उसका एक शुरुआती अंतरा है, वो मैं गाना चाहूंगा।
1: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे और हमारे युवा श्रोता भी सुनेंगे।
2: जब

0: रहे और फूले फले।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं आप, और
0: एकदम
1: आप पशु विज्ञान के छात्र हैं और साथ साथ आप गाने में भी दखल रखते हैं। दोनों ही जगह पर आप बेहतरीन हैं। ईश्वर आपको बहुत कामयाबी दे और आप बहुत आगे जाएं। अब आपकी पसंद का एक गीत हम सुनवाएंगे आपको स्टूडियो से। बताइए कौन सी फिल्म का गीत, कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: जी, मैं चाहूंगा कि चिट्ठी आई है नामक गीत चलाया जाए।
1: ये नाम फिल्म से गीत है, पंकज
0: जी
1: उधास ने गाया था।
0: जी
1: और इस गीत को सुनते सुनते कोई ऐसी आंख नहीं होती है जो नम होने से रह सके।
0: जी
1: बेहतरीन गीत, आपकी पसंद उम्दा है। अक्षत आपके लिए ये गीत सुनवा रहे हैं।

0: आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर अक्षत, और आपने इतनी सारी जानकारी दी, गीत गुनगुनाया और गीत सुनवाया। इस सब के लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: धन्यवाद। और साथियों, अभी आपने सुना यह पुनः प्रसारित करें काउंसलिंग का कार्यक्रम, जिसका विषय था पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत कौशिक, और उनसे बातचीत कर रही थी अर्चना मिश्रा। साथियों, साथ ही साथ हम कार्यक्रम में बात करते हैं कि कुछ लेखक केवल कहानियां ही नहीं लिखते, वे एक पूरा संसार रच देते हैं। और ऐसे ही एक लेखक रही हैं महान साहित्यकार आर के नारायण। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था, और वे चुनिंदा लेखकों में से थे जिन्होंने अपनी सरल और प्रभावशाली शैली से भारतीय जीवन को विश्व भर के पाठकों तक पहुँचाया। आर के नारायण ने अपने लेखन में आम लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं, संघर्षों और सपनों को बहुत ही सहजता से प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित काल्पनिक नगर मालगुड़ी आज भी भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है, और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड और मालगुड़ी डेज प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरल भाषा और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का सजीव चित्रण था, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि महान साहित्य के लिए कठिन शब्दों का ही नहीं बल्कि गहरी संवेदनाओं और सच्चे अनुभवों की आवश्यकता भी होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, और साथ ही साथ नई पीढ़ी के साहित्य से जोड़ने का कार्य करती हैं। आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, आर के नारायण का साहित्य हमें सरलता और संवेदनशीलता और साथ ही साथ मानवीय मूल्यों को याद दिलाता है। उनकी कहानियाँ सिखाती हैं कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी बड़ी सीख दे सकती हैं। वे केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के सशक्त चित्रकार भी थे। और साथियों, आइए उनकी इस जयंती पर हम उनकी पुस्तकें पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें और विकसित करें सभी, ताकि उनके साहित्य के माध्यम से हम अपने जीवन को और सरल बना सकें। चलिए साथियों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का। ये कारवा तो यूं ही चलता रहेगा, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम युवा संसार। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप हिंदी समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री

0: की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग 1 सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में शाम 7:10 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वार्ता का विषय रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:30 पर। श्रोताओं ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंट वार्ता एक किसान से क्रम में हम आपकी भेंट करवाएंगे एक प्रगतिशील किसान गजराज के साथ। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:25 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:45 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा 9:15 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत हम आपको सुनवाएंगे 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के मुख्य आकर्षण। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक श्रृंखला सुनिएगा कल शाम 7:10 पर। इस श्रृंखला में आप सुन सकेंगे वार्ता साइंस एंड टेक। वार्ताकार होंगे जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री। कंट्री वाइड ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। कल रात 9:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम इनसाइट्स। कल रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 7:15 पर विविधा कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा हमारी खेल परंपरा। सुबह सवेरे ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:25 पर। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर। दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा भिंडी फसल की देखभाल। कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर दिलबाग सिंह अलावत की बातचीत का विषय रहेगा थनेला रोग कारण उपचार और बचाव। ग्रामीण संसार कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 7:00। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम कल रात 8:25 पर। कल सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूरज भान सांगी के साथ ही। फिल्म संगीत का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो रोहतक प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 1:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे कल शाम 7:45 पर। और एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आपको कुछ खोए व्यक्ति संबंधी जानकारी दे दें। आप हैं लक्की, आपके पिता का नाम है राजू जो कि खानपुर कला सोनीपत के रहने वाले हैं। उम्र 16 साल है। रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा, फुर्तीला शरीर। इनके बारे में, ये अपने घर से लापता है, इनके बारे में कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप सदर थाना सोनीपत में दे सकते हैं। यहाँ पे निहाल, इनके पिता का नाम है विनोद जो कि शामड़ी रोड खानपुर कला के रहने वाले हैं। उम्र इनकी 17 साल है। रंग गोरा, लंबूतरा चेहरा, फुर्तीला शरीर। इनके बारे में यदि आपको सूचना देना चाहते हैं तो थाना सदर गोहाना सोनीपत में दे सकते हैं। दूरभाष नंबर है 7027051216। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी चंडीगढ़ से रिले किया जाएगा।

0: विश्व नेताओं ने भी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गत 12 वर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्र के सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए और केंद्र सरकार ने मनरेगा से VBG रामजी में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार, रिसा नायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में कहा कि यह अवसर उनके वंदन और अभिनंदन का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बीते 12 वर्ष राष्ट्र की सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण, जनसेवा और विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री की यह कालखंड सेवा, सुशासन, संकल्प, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित एक युगांतकारी यात्रा का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देशवासियों ने विकसित, आत्मनिर्भर, सशक्त और गौरवशाली भारत के जिस सपने के साथ देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी थी, आज 140 करोड़ भारतवासी उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित।

0: किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: कुरुक्षेत्र में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा नर्सिंग अधिकारियों पर की गई टिप्पणी के बाद धरने पर बैठी नर्सिंग अधिकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि उनके राज्य संगठन की कॉल पर मरीज के हित में उन्होंने धरना उठा लिया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अहम के चलते उन्होंने माफी नहीं मांगी। नर्सिंग अधिकारी रेणु भाटिया से माफी की मांग कर रहे थे। डॉक्टर के पास उस समय कौन अटेंडेंट था यह पूछे जाने पर उन्होंने इस बारे कोई जानकारी होने से इनकार किया और पता लगाने के लिए जांच की मांग की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक देश की कमान संभालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज नरवाना विधानसभा के ढाणी गुरुद्वारा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बेदी ने कहा,
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है उन्होंने आज तोड़ दिया है। 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण के, सबसे बड़ी बात है कि 12 साल लगातार प्रधानमंत्री के रूप में एक भी अवकाश नहीं लिया उन्होंने। ऐसा बेहतरीन कार्यकाल, देश के लिए योजनाएं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, देश के पूर्व सैनिकों के लिए समान पेंशन, देश के किसान के लिए फसल बीमा योजना, देश के किसान के लिए किसान समृद्धि योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति की जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, 70 साल के ऊपर की आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को यह विश्वास देना कि आपके स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार करेगी।
0: मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और देश के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उन्हें विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की उनकी कार्यशैली, अनुशासन, अथक परिश्रम, दूरदर्शी सोच और जन सेवा के प्रति समर्पण प्रत्येक जन प्रतिनिधि के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गत 12 वर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्र के सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने अशोक भाई जी राम राम। भाइयों गर्मी बहुत तेज पड़न लग रही है और कई बार तो बीच बीच में हो जाए है मौसम सा इस तरह कल ही था, लेकिन बात यह है कि भाइयों कि हमने उसे संभलना पड़ेगा भाई। हाँ जब ये एक नियमित रूप से मानसून आ जाए फिर तो चलो ठीक से हो जाएगा, लेकिन अब ये है कि वह दो चार दिन तो खूब गर्मी गिर है, लुआ पड़े हैं और उसके बाद फिर ये थोड़ा ठंडा मौसम कर दे, माड़ी मोटी बूंदाबांदी कर दे। तो इसमें क्या है कि भाई जो हम अपनी एक ये जो देखभाल की बात है उन्हें उसमें थोड़ी लापरवाही बरत जाए कि कोई बात ना हो गया, मौसम ठीक हो गया, लेकिन मौसम अभी ठीक नहीं हुआ। ठीक तभी मानेंगे हमें जब ये मानसून आ जाएंगे, तो उसमें वे जो अपनी खेती बाड़ी का काम है वो भी अपना उस पर रखना है साथ के साथ में। भाई मान लिया ये जो खरीफ फसल की जो बुआई का काम है यार है भाई, धाना की जो पनीर की रोपाई करने लायक रहे भाई, तो उसमें ये है कि बीज की बिजाई करना है यानी नर्सरी में। कहने का मतलब यूँ है कि वह ये है काम है, हमने उसको ढीला नहीं छोड़ना कि वह कोई बात ना आज उसमें पानी लगाने की टाड़ कर दिया वो हो गया भाई थोड़ा मौसम ऐसा हो गया, नहीं उसमें लगातार हमने पानी लगाते रहना है। ध्यान ये रखें पानी शाम के समय लगा के हम उसमें, और बार बार ये भी कहा आपने बस ज़्यादा ठोक के भी ना लगाओ, पानी उन्हें ठीक ठाक से उसमें लगाते रहे तो इसमें ठीक रहेगा। अगर अपनी कि जाकर देख आओ यूँ ही दूसरी फसल खास करें कि इसका भी बड़ा महत्व है भाई, जो हरा चारा वाली फसलें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले आप तो ये बता था कि भाई इस तरह और हर बार बताते रहता है कि एक तो दूसरी पीढ़िया बाजरा ही बजाई कर ले, ज्वार है उसमें बाजरा हो जाए, लोबिया हो जाए, मक्का हो जाए, ये ताकि एक तो पशु ने स्वादिष्ट लागे और उन्हें भरपूर पौष्टिक आहार भी मिल जाए, ये चीज़ों का भी हमने पूरा ध्यान रखना है। हर भाइयों ने उसमें कर भी रखा क्योंकि अकेली ज्वार की बजाई कराया तो उसमें जब तक ये बरसात नहीं आती है चार पांच पानी नहीं लगा देते तब तक उसमें एक विषैला पदार्थ रहे और वो फिर अपने पशु का नुकसान करे, तो इसलिए अकेली ज्वार की बजाय उसमें लोबिया है या दूसरी पीढ़िया बाजरा है या और जिस तरह गवार मिला दिया, जो भी चीज़ें आप उसमें मिला सको हो यानी एक पौष्टिकता के उसमें हो जाओ तो बढ़िया रहे, पशु राज्य का है और ठीक दूध देगा। और इन दिनों यह दिक्कत हो आर्दी की जो कह आर्दे दूध तो घट जाए पशु, उसका गठन का भी यू एक कारण हो जाता, तो ये देखना है। और भाइयों जिस तरह आप ये देखें जो जागरूक किसान है ना, अपने जागरूक किसान तो बहुत तरीके से ये रखें अपना पूरा ध्यान रखें, पशुओं के लिए भी, अपने खरीफ की फसलों के लिए भी, वो उसमें नकदी फसलों में भी या फिर परंपरागत जो खाद्य फसलें उनकी भी, सब्जी फसलों की भी, विदेशी खादों की भी, हरी खादों की भी, यानी सारे डाल का मैं तो वो समझे उस बात ने और अपनी खेती में प्रयोग करके देखें। और बार बार आपने इन किसानों तक आपकी भेंट वार्ता सुनवा उसके कार्यक्रम के तहत, ताकि आपने उन तक कोई प्रेरणा लेकर आप अपने उसमें भी लेवल पर भी काम करने इस तरह के लग जाओ। और उसमें क्योंकि भाई जिस तरह आपने ये पता ही आधुनिक समय में खेती तो है कम, जोत तो कम रहेगी लेकिन जनसंख्या देखो किस तरह बढ़ रही है, तो उसके लिए भी हमने अपना गुजारा खुद का भी किसान भाई ने करना है और अपनी देशवासियों के लिए भी अनाज पैदा करना है, तो उसमें विभिन्नता लेनी है कि यानी एक चीज़ के पीछे पड़ गया जैसे धान और गेहूँ के पीछे, ये नहीं दूसरी फसलें भी हमें लगानी है ताकि अगर मान लिया कोई हम फसल कोई चीज़ आयात करते हैं उस पर रोक लगाया जाए बल्कि हम निर्यात करें उस चीज़, तो जो जागरूक किसान है वो इस तरह का तरीका अपना रहे हैं। तो आज उससे क्रम में आपने एक बैठवार्ता सुनवाएंगे, बैठवार्ता एक किसान से, और आज के हमारे किसान हैं श्री गजराज सिंह जी, ये पूर्व प्रसारित बातचीत से, तो सुन लीजिए
3: भेंट वार्ता एक किसान से। भाइयों इस क्रम में आज एक युवा किसान हैं और पशुपालक हैं, इनको हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप हैं गजराज सिंह जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले बताओ आपका गांव कौन सा है?
4: पालड़ी पंडियारा है सर।
3: और जिला?
4: जिला महेंद्रगढ़।
3: महेंद्रगढ़। जमीन कितनी है आपके पास में?
4: जमीन मेरे पास ही कमी है, 2 एकड़ जमीन है।
3: अच्छा, तो उसमें क्या कुछ उत्पादन लेते हैं?
4: मैं तो ये पशुओं का ही चारा लगाता हूँ उसके अंदर, जैसे हरा चारा लगाता हूँ 1 एकड़ के अंदर, और एक में गेहूँ लगाता हूँ गेहूँ के टाइम में, और बाजरे के टाइम में उसमें बाजरा लगाता हूँ 2 एकड़ में।
3: अच्छा,
4: उसमें बाजरा अगर 2 एकड़ नहीं लगा तो उसमें 1 एकड़ में हरा लगा दिया, ज्वार वगैरह लगा दिया, नहीं तो 2 एकड़ बाजरा।
3: तो पशु कितने हैं आपके पास में?
4: अभी मेरे पास 15 पशु हैं।
3: 15 पशु हैं। कौन कौन से?
4: मेरे पास भैंस है और गाय है, एक बुल है, बुल अभी बिक्री कर दिया, एक पंचायत को दे दिया।
3: अच्छा, तो ये पशुपालन का काम कब से आपके ध्यान में आया?
4: ये 2014 से।
3: अच्छा, तो किस तरह से शुरुआत हुई फिर?
4: मैं पहले जी एक कंपनी में सर्विस करता था
3: जी,
4: वहाँ से छोड़ने के बाद मैं गांव में आया, तो गांव में आने के बाद कि हमारा पहले मेरी माँ करती थी काम, पिताजी आर्मी में थे
3: जी,
4: तो हमारे पास एक भैंस एक गाय थी।
3: अच्छा,
4: और वो अच्छी भैंस पालती थी माँ
3: जी,
4: तो वो भैंस से हमारे कटड़ी ने जन्म दिया, तो उसको अच्छी कटड़ी थी
3: जी,
4: मैंने उसको तैयार किया कटड़ी को
3: जी,
4: उसको 18 महीने में उसको मैंने गाभिन करवा दिया था,
3: अच्छी
4: अच्छी तैयार किया था, ज्यादा वजन हो गया था उसका, 2.5 क्विंटल से ऊपर वजन हो गया था 18 महीने में, गाभिन करवा दिया था
3: जी,
4: उसने भी कटड़ी दी। उसके बाद फिर हमने देख सके कि ये कटड़ियां आ रही हैं और अच्छे पशु धन से हमारे को अच्छे पशु हैं, गांव में लोग आते हैं पूछते हैं भाई ये कौन से झोटे की है ये कटड़ी या सिमन की है
3: जी, जी।
4: आप क्या खिलाते हो इनको? तो गांव वाले हमारे से पूछते थे कि, तो हमारा हौसला बढ़ता गया, हमने और अच्छे पशु तैयार किए, हमने अपने पे कम ध्यान दिया, पशु ज्यादा ध्यान दिया, तो अच्छी कटड़ियां तैयार की, उसके बाद वो ब्याई उसने कटड़ी दी वो भी तैयार कर ली, तो अच्छी से अच्छी हमने मुर्रा नस्ल की कटड़ियां तैयार की, उनका दूध हमने सन 2004 से हमने दूध प्रतियोगिता हमारे गांव में हुई थी, उससे हमने फर्स्ट बार हमारी भैंस ने दूध निकाला था 15 किलो।
3: अच्छा,
4: उस टाइम 12 लीटर से ऊपर की जो गवर्नमेंट ने कर रखा था कि जो 12 लीटर से ऊपर की दूध भैंस दूध देने वाली की उसको इतने 5,000 रूपए और 15 से ऊपर वाली को इतने, ऐसे अलग अलग वो कैटेगरी बना रखी थी।
3: अच्छा,
4: 2004 से और 2024 तक हम लगातार पशुओं को दूध प्रतियोगिता में लगातार है।
3: अच्छा,
4: गवर्नमेंट से हमारे को दूध प्रतियोगिता पैसे मिलते हैं, पशु प्रदर्शनी से मिलते हैं
3: जी,
4: और ये अपने मेले होते हैं इनमें ले जाते हैं, तो गवर्नमेंट का भी सहयोग रहा है पशुपालन में हमारा काफी, और हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, इनने पूरा सहयोग करा है। अभी 2014 से और 2024 के बीच में मैंने मेरे काफी स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पशुओं ने नाम जीता है
3: जी,
4: और उसके बाद मैंने एक बुल दिया एक पंचायत को दिया, महेंद्रगढ़ जिले की पंचायत है, उसको मैंने एक अपना बुल दिया है
3: जी,
4: वो भी ऑल इंडिया में फर्स्ट प्राइज आया था।
3: अच्छा,
4: तो वो M29 का बच्चा था
3: जी,
4: और अभी वो अच्छी सर्विस दे रहा है गांव के अंदर।
3: अच्छा, तो दूध का क्या करते हैं आप?
4: दूध मैं जी सेल करता हूँ,
3: बेचते हैं।
4: हाँ जी,
3: कंपनी से बंधा हुआ है आपका?
4: हाँ जी।
3: कितना दूध उत्पादन हो जाता है?
4: दूध तो घटता बढ़ता रहता है जी, पहले 30-35 पशु थे दूध ज्यादा था, अब 15 पशु है, तो हमारे खुला दूध जाता है, पशुओं को बच्चों को ज्यादा दूध पिलाते हैं, तो दूध का तो इतना हमारा नहीं, उसका खर्चा पानी चल जाए डेयरी का।
3: अच्छा,
4: दूध से कितना है, बाकी हमारा तो मेन तो होता है कि ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो अच्छे पशु तैयार।
3: तो ब्रीड कौन सी है?
4: मुर्रा नस्ल की है।
3: मुर्रा है।
4: हाँ जी।
3: तो इसका जो शुद्धता है, इसकी प्योरिटी है, उसका किस तरह ध्यान रखते हैं आप
4: मुर्रा का जी?
3: हाँ,
4: मुर्रा की तो जी देखो, हमने एक बार पहले से ही देख लिया कि भाई ये पशु अच्छा है, इसके इतना दूध है, ये 20 लीटर दूध वाली है
3: जी।
4: तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम इसके ऊपर 25 लीटर वाला बच्चा तैयार करें इससे।
3: अच्छा,
4: 20 लीटर की है तो इससे हम 25 लीटर वाला बच्चा इससे लें
3: जी।
4: तो उसके लेने के लिए हम अच्छे बुल का सिमन का चुनाव करते हैं
3: जी,
4: 25 लीटर वाले जिसकी बुल की भैंस की उसकी माँ ने दूध निकाला हुआ है उसका हम सिमन करवाएंगे, 20 किलो वाली ये है, तो उन दोनों का 50-50 गुण भी आ गए तो ये अच्छा ही बच्चा देगा। तो हम मुर्रा का चुनाव तो पहला तो जी उसका माँ का देखते हैं, फिर उसका बाप का रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद जो बच्चा आएगा वो प्योर ही आता है जी मुर्रा का।
3: अच्छा, कहीं से आप बीज लेके आते हो? जैसे संस्थाएं हमारी NDRI है, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है,
4: हम तो यदि गांव के अंदर जो HLDB के सिमन आते हैं ना गांव के अंदर, वो सिमन करवाते हैं, वो सारे अच्छे बुल हैं, वो सरकारी संस्था के जो बुल है ना उनके सिमन आते हैं।
3: अच्छा।
4: और वो सारे बुल टेस्टिंग होके सब लेवल में सारे बिल्कुल 20 लीटर से जो
3: ज्यादा
4: के हैं सारे बुल।
3: अच्छा, तो मतलब उनका बीज आप?
4: हाँ, उनका ही करवाते हैं, हॉस्पिटल से करवाते हैं।
3: अच्छा, तो इसमें खान पान में क्या कुछ ध्यान रखते हो आप ताकि उसका दूध उत्पादन बढ़ा रहे और बढ़े भी?
4: खान पान में जी उसको एक पशु को लगभग 20 से 25 किलो तो हरा चारा देना पड़ता है।
3: अच्छा।
4: उसके बाद वो पशु उसके डाइट प्लान हर पशु के अलग से तय करते हैं कि भाई इसका 20 किलो वाली पशु को दूध दे रही है उसको इतना देना है, 10 किलो वाली कितना देना है, बच्चों को कितना देना है, अलग अलग जो दूध नहीं दे रहा उसको सबकी अलग अलग डाइट बना रखी है।
3: अच्छा।
4: दाना सभी को मिलता है, चाहे वो दूध दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, दाना सभी को देते हैं उसको बॉडी को जिंदा रखने के लिए, उसको वजन उसका सही रहे पशु को, अगले ब्यात में दूध ज्यादा बढ़ाए, जैसे गाय बन जाती है उसका हम सब कर रिकॉर्ड रखते हैं भैया गाय बन हो गई, इसको अब डाइट प्लान इसकी बढ़ानी है, कटड़ी की अलग डाइट होती है, छोटा बच्चा होता है उसकी अलग डाइट होती है।
3: अच्छा, मतलब हर एक पशु का आप हिसाब किताब रखते हैं?
4: हाँ जी, हाँ जी।
3: उसके खान पान का भी?
4: खान पान का
3: आपने बताया कि कोई गाय बन हुई है तो
4: उसका सब का डायरी बना रखी है हमने। पहले तो हमारे जो हॉस्पिटल में हम HLDB का सीमन करवाते तो जो पशु 20 लीटर वाले से ऊपर वाले उनको एक चार्ट बना देते थे हमारे को, उसमें सब डिटेल होती है। हमने आज इस पे सीमन करवाया, उसकी डेट डाल दी, कौन से बुल का है उसकी, उसका नाम लिख दिया और उसपे सारा उस चार्ट के अंदर रिकॉर्ड होता है उसका।
3: अच्छा।
4: अगले ब्याज में जब ब्याज आएगी जब उसमें कौन सा बच्चा दिया है उसमें बच्चा उसका नाम चढ़ा देंगे कि भाई इसका ये नाम है और इस डेट को इसका जन्म हुआ था, तो सारी उसमें चार्ट में कर लेते हैं।
3: मतलब कोई कभी भी देख भी सकता है और आप रिकॉर्ड भी रख सकते
4: हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमारे को किसी ने मांग लिया कि भाई आपके बुल का क्या जन्म कब हुआ था, कितने उम्र का होगा, तो मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उसका जन्म प्रमाण पत्र बना रखा है।
3: अच्छा।
4: हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अपलोड किया था, ऐप चालू किया था, उस पर हमने उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था।
3: अच्छा, तो ये मतलब बहुत सारी बात जो आप बता रहे हो, ऐप भी है उसका, तो ये सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी?
4: मेरे पास उसका वो उसका जन्म प्रमाण पत्र है मूल का और 2-3 भैंसों का भी है, फिर उसके बाद वो ऐप बंद हो गया था।
3: जी, गाय भी रखते हैं आप?
4: हाँ जी, गाय
3: रखते हैं। कितनी गाय है आपके पास?
4: अब मेरे पास 3 गाय है।
3: अच्छा, कौन सी नस्ल की है?
4: एक हरियाणा नस्ल की है, 2 HF गाय है।
3: अच्छा, तो गायों के रख रखाव में भी आप इतनी ही मेहनत करते हैं?
4: उतनी गाय में करते हैं जी, उतनी भैंस में करते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जो पशु है ये मेरे बच्चों से भी अच्छे लगते हैं मेरे को, मैंने लगभग पूरा टाइम इन पे देता हूँ, पशुओं पे ही।
3: अच्छा, अब थोड़ा सा बात ये करेंगे कि जो भाई जिनके पास में अच्छी जमीन है वो जमीन से खेती करते हैं और आप पशुपालन का काम करते हैं, दोनों की तुलना करें तो कौन सा फायदेमंद काम रहता है?
4: देखो जी, जिसके पास जमीन है और जिसके पास जैसे 5 एकड़ का जो किसान है ना
3: जी,
4: वो अगर साथ में पशुपालन का काम करेगा ना तो वो एक लाख रुपए जो नौकरी वाला ना उसको भी पीछे छोड़ देगा, ये मेरा अनुभव बताता हूँ मैं
3: जी।
4: अगर 5 एकड़ वाला किसान अगर साथ में पशुपालन का काम करेगा ना वो उसको फायदेमंद रहेगा बहुत ज्यादा।
3: अच्छा, तो आप अपना थोड़ा सा हिसाब किताब बताओ कि आपको साल में कितना उत्पादन मिल जाता है, कितना तो पशुओं की बिक्री से और कितना आपका दूध के उसके हिसाब से, एक मोटा सा अंदाजा।
4: हम तो मेरी घरवाली हम दोनों काम करते हैं डेयरी के अंदर, हम कभी भी मजदूर हमने कभी रखा डेयरी में।
3: अच्छा।
4: कभी भी नहीं रखा।
3: अच्छा।
4: और आगे भी नहीं रखेंगे, तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमारा भाई 15,000 रुपए हमारे दोनों के ये महीने के निकल जाए, हम 30,000 रुपए 25 से 30,000 रुपए हमारी महीने की बचत आती है दोनों की, और हम उसमें खेत पशुपालन से सारा खर्चा निकाल गए।
3: अच्छा अच्छा,
4: 25 से 30,000 रुपए बचत आती है जब अभी 4-5 पशु दूध दे रहे हैं।
3: अच्छा।
4: ज्यादा होते जब बढ़ जाती है, एक पशु से हमारी 8 से 9,000 रुपए बचत आती है एक पशु से।
3: अच्छा, महीने की। अच्छा,
4: सारा खर्चा काट
3: और गया। और जब पशु
4: वो उसकी 15 लीटर वाली जो भैंस है उसका है, ये 15 से नीचे वाली यानी 15 से ऊपर वाली का।
3: अच्छा,
4: 15 से ऊपर वाले का।
3: अच्छा, तो आपके पास जितनी भी भैंस है वो 15 तक का दे देती है?
4: ये मेरे पास 18 से ऊपर वाली है।
3: 18 से ऊपर की?
4: हाँ जी, 18 से ऊपर वाली रखता हूँ मैं। ये हमारा जो ये ब्रीड है ना, इसके अंदर ये फर्स्ट बार में जो जन्म ले जो भी कटड़ी ब्याएगी या उसका जन्म होता है उसको हम उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं।

0: जब वो फर्स्ट बार भी आएगी वो 15 से ऊपर दूध निकालती है।
1: अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा कभी आपने थोड़ा सा दूध का उपयोग दूसरी तरफ करने का भी कुछ सोचा है कि हम कोई प्रोडक्ट को?
0: मैंने जी ट्रेनिंग किया है भाई, दूध से पनीर का, अपने लस्सी का और खीर, आइसक्रीम वगैरह, ये हमने ट्रेनिंग किया है यूनिवर्सिटी में हिसार।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसमें क्या है जी, हमारे यहाँ पर मार्केट नहीं है महेंद्रगढ़ के अंदर।
1: अच्छा,
0: मार्केट नहीं है तो इससे हम क्या आगे, मार्केट न होने से भी हमने ये बिजनेस किया नहीं। मैंने तो नस्ल पे काम करता हूँ, तो नस्ल पे उससे हमारा दूध प्रतियोगिता हम वसूल लगा लेते हैं, कुछ दूध से खर्चा पानी निकल जाता है डेयरी का, और उधर अपनी ये प्रदर्शनी में ले जाते हैं पशुओं को, इससे हमारा नाम भी हो रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है, इससे बचत हमारी दूध से सही हो जाती है।
1: अच्छा,
0: उससे हमारा गुजारा सही हो जाता है
1: जी। अच्छा, कई बार पशुओं में आजकल कुछ समस्या देखने में आती है, गुंगामा हो गया, पशु बोलता नहीं है, इस तरह की दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक खनिज मिश्रण की सिफारिश करी जाती है।
0: खनिज मिश्रण बहुत ही बढ़िया चीज है जी। अभी आजकल जमीन में जो जितने भी 17 तत्वों की जरूरत होती है, और ये सारी चीज जमीन के अंदर अभी बहुत कमी आ गई, तो ये हमें ऊपर से देना पड़ता है खनिज मिश्रण। मैं मेरे सभी पशुओं को देता हूँ, 15 दिन के बाद मैं छोटे बच्चों को शुरू कर देता हूँ।
1: अच्छा,
0: 15 दिन के बाद खनिज मिश्रण बच्चे को लस्सी में डाल देता हूँ, एक चम्मच खनिज मिश्रण की उसमें लस्सी में डाली, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल देता हूँ सप्ताह में 2 बार, और उसको लस्सी में मिला के उसको लस्सी में पिला देता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जैसे वो खाना शुरू करता है दाना, उसके बाद दाने मिला देता हूँ।
1: अच्छा,
0: मिनरल मिक्सर मैं पशु को बंद नहीं करता, बंद करता हूँ जब पशु ब्याने के 20 दिन रहता है, उस टाइम बंद करता हूँ पशु का, और ब्याने के 20 दिन बाद 40 दिन बंद होता है मेरा एक पशु का, जब साल में 40 दिन बंद करता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा और बताओ कि आप किस तरह से उनके चारे का और पानी वगैरह का, और अब तो सीजन बदल रहा है तो उसमें किस तरह से ध्यान रखते हैं आप? सुबह किस टाइम से आपकी दिनचर्या शुरू होती है?
0: हमारी दिनचर्या जी सुबह हम उठते हैं 4:30 बजे उठते हैं सुबह।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले उठते ही हमें सर्दी के टाइम है तो जो पशु का पर्दे होते हैं, उठते ही हम उन पर्दों को हटा देते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर चल जाए, ताकि पशु को सर्दी ना लगे, और वो जो बाहर के जो टेम्परेचर है ना उसमें वो हो जाए, तो पर्दे उठा देते हैं उस, तब तक हम चाय वाय पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तब उसके बाद पशुओं को बाहर निकालना, साइड में बाहर वाले साइड में ले आते हैं,
1: ठीक है,
0: अंदर वाले से बाहर वाले साइड में लाते हैं, खुला शेड होता है उसके अंदर।
1: अच्छा,
0: तो उसमें सूखा चारा तो रात को डाल देते हैं, सुबह हम उसमें चाट डालना होता है दाना, और उसके अंदर है डालना होता है, जिसका दूध निकालना होता है उसमें चाट डाला, और नीचे बैठ के दूध निकालने के लिए
1: हाथ से निकालते हैं,
0: हाथ से निकालते हैं। भैंसों के अंदर मशीन कम कामयाब है,
1: ठीक है,
0: गाय के अंदर 100% है।
1: अच्छा,
0: हाथ से निकालते हैं,
1: ठीक है,
0: तो दूध निकाल लेते हैं उनका, जिसको दूध दूध देने वाले पशु नहीं है उनको अलग होते हैं, दूध वाले अलग होते हैं, और उनको सबको अपना अपना उसके हिसाब से डाइट उनको दे देते हैं पशुओं को, उसके बाद सर लेते हैं, तब तक हम अपना चाय वाय पी लेते हैं, सर्दी का टाइम होता है तो आँस के पास बैठ जाते हैं, तो पानी गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको अंदर का जो होता एरिया वो रात को बैठने का सर्दी के टाइम में उसकी सफाई कर देते हैं, गोबर वगैरह बाहर निकाल देते हैं, गिल्ला ठान होता है उसमें सुख, और जो भी है उनकी सफाई वगैरह वो सारी करके उसको पर्दे वर्दे सब उठा देते हैं, दिन में धूप लग जाए हवा लग जाए और वो उनका जो ठान बोलते हैं हम,
1: हाँ,
0: कि वो सूख जाए, रात को आने से पहले वो सूखा मिले पशु, तब तो दिन में फिर धूप में रहते हैं बाहर।
1: अच्छा,
0: मैंने बाहर खेत में बना रखी है डेयरी।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वहां पर धूप में रहते हैं, पूरे दिन धूप मिलती है, सर्दी गर्मियों को गर्मी के हिसाब से बनाते हैं, कर रखे हैं पेड़ लगा रखे हैं, उनके पेड़ नीचे रहते हैं।
1: अच्छा,
0: जिन पशुओं को हिट में आ रहा है उसको सीमन करवा देते हैं, और बीमारी तो हमारे भगवान के दया से बीमारी रहती नहीं है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम ये इंजेक्शन लगवाते हैं गवर्नमेंट के, मुंह खोरी गल घोटू के, साल में 2 बार लगवाते हैं, पहले साल में 4 बार लगते थे।
1: अच्छा,
0: अब साल में 2 बार लगते हैं,
1: ठीक है,
0: दोनों को एक ही कर दिया इंजेक्शन को।
1: हाँ,
0: तो ये साफ सफाई रहती है, उनकी अच्छी देखभाल होती है, तो पशु बीमार नहीं होता, और टाइम टाइम पे जो गाँव में कैंप लग रहते हैं डॉक्टरों से, हम उनसे पूछते रहते हैं, कैंप में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते रहते हैं,

0: तो लगभग वहां पर सारा मिल जाता है पशुओं की, तो वो हम अपने उसको आके अपने उसमें डेयरी मेंटेन कर लेते हैं, तो हमारा भी बचाव होता है, पशुओं का भी होता है, खर्चा भी कम होता है। और
1: अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने तो प्राइवेट काम भी करके देख रखे, नौकरी भी करके देख रखी, तो नौकरी और जो पशुपालन का काम है अपना, कोई छोटा काम भाई शुरू करना चाहे, कोई युवा शुरू करना चाहे, तो क्या सलाह दोगे?
0: तो ये अपना काम तो अपना ही होता है। देखो हम पहले नौकरी करते थे, गुड़गांव करते थे, महीने में एक बार, महीने में 2 बार घर आते थे, कभी 4 बार आते थे, संडे की छुट्टी होती थी। और वहां पर घर आने के लिए हमें परमिशन होती थी कि हमें भाई 1 घंटे पहले जाना, ट्रेन है हमारी गेट पास रहते थे, तो वो भी नहीं मिलता था। तो छुट्टी होती थी कभी रात को 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी कुछ। तो ये हमारा काम है, इसमें हम कभी भी अपना काम को एडजस्ट करके अपना काम कर सकते हैं, बगैर किसी से पूछे, बगैर, हम आंखों आजाद हैं, अपने पशुओं का काम किया, हम अपना दिन में 4 से 5 घंटा कहीं भी जा सकते हैं, अपना बाजार का काम कर सकते हैं, रिश्तेदारी में जा सकते हैं। तो ये
1: वो जो
0: टाइम भी
1: जो जो
0: टाइम
1: पैसे है जो वहां से तनख्वाह मिलती थी उसका कितना क्या कुछ और फायदेमंद रहता है ये?
0: देखो जी, उसमें तनख्वाह बराबर ही है हमारा, और इसमें भाई यहाँ पर हमारा नाम हो रहा है, खुद का बिजनेस है, हमारे गांव के अंदर पहचान है, जिले के अंदर नाम हो रहा है, आगे और बड़ा लेवल का काम करे तो हरियाणा में नाम होगा, इंडिया में नाम होगा। वहां क्या है, नाम नहीं होगा, वहां पर नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां तो एक चार दीवारी के अंदर ही रह जाएंगे।
1: और वहां तो वैसे भी डर बना रहता है, कब मालिक है, अभी छोड़ जाओ, ये
0: बिल्कुल जी, यही है
1: तो अपना खुद का काम है, अपने हिसाब से आगे
0: अपने
1: पीछे कर
0: हिसाब
1: सकते
0: से।
1: हैं। और जैसे आपने बताया कि थोड़ी सी मेहनत करें तो जो नौकरी जितनी कमाई है वो तो इससे भी कर सकते हैं,
0: देखो
1: इसके
0: जी, यहाँ पर अच्छे पशु रखो, अच्छे पशु रखेंगे तो गवर्नमेंट भी सम्मानित करती है, दूध के अलग पैसे मिलते हैं, दूध प्रतियोगिता के प्रदर्शनी अलग मिलते हैं, और वैसे आपका अच्छा पशु है तो 10 दूध ले हमारे लाइन में मिलेंगे कि भाई
1: बिल्कुल।
0: साफ सुथरे पशु रखता है,
1: हाँ
0: अच्छे दूध, इसके पशु अच्छे हैं तो अच्छे दूध देते हैं, तो उसमें 10 लेने वाले मिलेंगे गाँव के अंदर ही आपको दूध, अच्छी साफ सफाई वाले के पास तो 10 से फालतू आदमी आ सकते हैं दूध लेने के लिए।
1: सही बात है। यानी कि अगर नौकरी की तरफ भागने के बजाय अपना खुद का काम किया जाए, पशुपालन का जैसा आपने बताया है, पशुपालन का किया जाए और इसके साथ में ही दूध और उसके उत्पाद हैं वो तैयार किए जाएं और उसकी बिक्री की जाए, अगर नज़दीक मार्केट लगती है तो, बाजार लगता है, तो ये काम किया जा सकता है और एक अच्छी आमदनी है वो पशुपालन से ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ले सकते हैं सर, ये इसमें जैसे हम दूध का उत्पादन करेंगे तो उससे हमारे को डबल इनकम हो जाएगी, और
1: जी
0: उसके साथ हमारे को ज्यादा स्टाफ चाहिए, हमारे घर के अंदर अगर ज्यादा आदमी है तो हम इस धंधे को 100% कामयाब हो सकते हैं।
1: नहीं, बल्कि अपने साथी हैं, गांव के कोई बेरोजगार भाई हैं तो उनको भी काम दे सकते हैं, एक उनकी भी मदद होगी, ये भी किया जा सकता है।
0: नहीं, ये किया जा सकता है। देखो जी, यहाँ पर अपने ये हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर ये जो समूह है ना, समूह कम चलते हैं, एक
1: खैर
0: जैसे विचारों के आदमी कम मिलते हैं,
1: खैर वैसे तो FPO हैं, बहुत सारी
0: FPO
1: हुई
0: हैं,
1: हैं और
0: वो
1: बहुत बहुत सी कोशिश की जा रही है
0: कोशिश
1: क्योंकि
0: जारी रही
1: हाँ
0: है।
1: कोई नहीं, वो जब शुरू में दिक्कत आती है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर इच्छा हो तो वही फिर जो दिक्कतें हैं, जो जो कठिनाई आई है उनको दूर करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा और एक अच्छा है कि समूह बनेगा और वो उससे काफी फायदा ले सकते हैं। तो गजराज भाई, आप स्टूडियो में आए और अपने विचार आपने साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: तो भाई ये तो आपने भेंट वार्ता सुनी किसान से, और जिस तरह श्री गजराज जी ने बताया कि भैंसों के ऊपर, खासकर पशु के ऊपर इन्होंने ज़्यादा गौर कराया है और पशुओं में इनका मतलब यूँ कह सकते हैं अपने जिले में पूरा नाम हो रहा है, तो यानी एक दूसरे के लिए हम ये है कि वह प्रेरणा ले सकते हैं कि वह ये देखो वह कितना बढ़िया काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, उन्हें शुरू से लेकर अंदर यहाँ तक का उन्होंने अपना सफर बता दिया इतना बढ़िया। तो अब ये बात है मनोरंजन की है, तो भाई आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे नरेश कुमार बिरधानिया और उनके साथी।

लड़के ने तू मन दिखावे।

0: ਭਾਈਆਂ ਨਰਿੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਰਦਾਨੀਆ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਾਤ ਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਤੋ ਖਾਸ ਕਰ ਬੈਂਗਣ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇਨ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਹਮਨੇ ਯੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਲਏ, ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਕਰੇ, ਸਪਰੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਰੇ, ਮੈਲਾਥੀਅਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਕੀ ਤਾਕਤ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੋ। ਇਸਮੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਕਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵਸਥ ਹੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਵੋ ਆਪਕਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਗੀ ਇਸਮੇ ਤੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਕਾ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋ ਆਪ ਸਪਰੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਲਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਰੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਮ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਹਮਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਔਰ ਹਮਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਹਮਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਨਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਸਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਬਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ NP 40 ਹੈ, NP 40 A ਹੈ ਔਰ Panth C 1 ਪੂਸਾ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਨ ਮਤਕੁਣ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਮਿਰਚ ਕਾ ਤੋ ਇੱਕ ਲੇਖਨ ਬੀਜ ਔਰ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕੇ ਲਈ ਬੀਜ ਲਾਗੇਗਾ, ਇਸਮੇ ਕੁਣ ਸਾ ਵੀ ਇਸਮੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਗਣ ਮੈਂ ਇਸਮੇ BR 112 ਇਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ H 8 ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਨ ਮਤਕੁਣ ਸਾ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਲੈ ਸਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਨਮੇ ਤੇ ਆਪ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਔਰ ਦੋ ਇਸਮੇ ਬੈਂਗਣ ਮੈਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸਮੇ ਬੀਜ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹ ਈਬ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਉਸਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਕੁਛ ਤੋ ਆਪਣਾ ਵੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ ਹਾਂ। ਗੇਹੂੰ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਮੇਂ ਰਹਾ ਹੈ 2540, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ 2530, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ 2600, ਨਰਵਾਣਾ ਮੈਂ 2520 ਔਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ 2600 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਚਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਮੈਂ 6400, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ 7050, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ ਵੀ 7050, ਨਰਵਾਣਾ ਮੈਂ 69, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਂ 7160 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਜੌਂ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਮੈਂ 2320, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ 2430, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ 2550 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ 2300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਕਾ 7400 ਰੁਪਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਕਾ 6620 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾ 6300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ 9800 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ 9600, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ 9900, ਨਰਵਾਣਾ ਮੈਂ 9800 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ 9000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਮਸਰ ਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਮੈਂ 7950, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ 7800, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ 8100, ਨਰਵਾਣਾ ਮੈਂ 8000 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ 8000। ਅਰਰ ਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਮੈਂ 10800, ਪਾਣੀਪਤ ਮੈਂ 10300, ਗੁੜਗਾਓ ਮੈਂ 10900, ਨਰਵਾਣਾ ਮੈਂ 11000 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਂ 10600 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਉੜਦ ਕਾ ਭਾਵ ਭਾਈ ਰੋਹਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 10400, ਪਾਣੀਪਤ ਕਾ ਵੀ 10400, ਗੁੜਗਾਓ 10600, ਨਰਵਾਣਾ 10500 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 10250 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਗੁੜ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਕਾ 4500, ਗੁੜਗਾਓ ਕਾ ਭਾਵ ਇਸਮੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 4600, ਪਾਣੀਪਤ ਕਾ 4900, ਨਰਵਾਣਾ ਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੜ ਕਾ 4800 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾ 6800 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਚੀਨੀ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ ਕਾ ਰਿਹਾ 4400, ਪਾਣੀਪਤ ਕਾ 4430, ਗੁੜਗਾਓ ਕਾ 4500, ਨਰਵਾਣਾ ਵੀ 4500 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਇਸਮੇ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਖਾਂਡ ਕਾ ਭਾਵ ਰੋਹਤਕ 4900, ਪਾਣੀਪਤ 4950, ਨਰਵਾਣਾ 4900 ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 4600 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਕਾ ਭਾਵ रोहतक का रहा है 1800 रुपये, पानीपत का 2000, गुड़गांव का 1700, नरवाना का 1650 और फरीदाबाद का 2000 रुपये फी क्विंटल। और आलू का भाव रहा है रोहतक का 780, पानीपत का 1150, गुड़गांव का 1050, नरवाना 850 और फरीदाबाद का भाव रहा 1200। सरसों का तेल का भाव है 16600 रोहतक, 16700 पानीपत, 16600 गुड़गांव, 16500 नरवाना और पूरे 16000 फरीदाबाद फी क्विंटल का भाव रहा है सरसों का तेल का। और भाइयों मौसम का बात जहाँ तक, तो मौसम का सामान्य रहने की बात है और बात यह है कि अपना गर्मी से बचाव करना बहुत ही जरूरी है। और भाइयों ईव घड़ी का ना देख लो, कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय हो रहा समाप्त, ई बाई समय कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भाइयों देखो जिस तरह आप ये देख रहे होगे आजकल जो दुर्घटनाएं होने लग रही, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं भी वो आग लग जाती है, तो उसमें खासकर आपने ये देखना है कि वो उससे बचाव करना। आप ये देखो हो कि वह कोई भी चीज़ मान लिया हो जाती है तो उसके बाद में उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके तो पास भी नहीं जाया जाता, पहले गर्मी इतनी है और उसके पास बिल्कुल नहीं जाया जाता, तो इसलिए अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और ये एहतियात के तौर पर ये देखना कि हमने पहले ही अपनी सुरक्षा ऐसी कर लेनी है। आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और फिर उसके ऊपर काबू नहीं पाया जाता और मानव हानि भी कितनी हो जाती है, तो उस बारे में आपने एक बातचीत सुनवाएंगे कि आग लगने के कारण और बचाव। तो और जानकारी दे रहे हैं उत्कर्ष चौधरी जी, तो सुनो ये बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा आग से रक्षा, और इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्कर्ष चौधरी जी को। आप स्टेशन ऑफिसर हैं फायर स्टेशन जो कि सेक्टर 5 में रोहतक में स्थित है। उत्कर्ष जी आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आग के क्या क्या कारक होते हैं, कि किन किन चीज़ों के जब आपस में मेल होता है तो आग की दुर्घटना बनती है।
2: देखिए एक फायर ट्रायंगल होता है अपना, जिसमें कि एक फ्यूल होता है जो कि ईंधन हो गया अपना, जिसके अंदर आग लगती है। दूसरा अपनी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेंट। तीसरा हमारा होता है टेम्परेचर, जो कि तापमान, एक तापमान पे ही आग उसकी ईंधन में लगेगी। जैसे कि तेल है, तेल थोड़ा कम तापमान में ही आग पकड़ देता है। लकड़ी है, लकड़ी को एक विशेष तापमान चाहिए, 100 से ऊपर जाएगा कुछ उस पर वो आग पकड़ेगा
1: जी।
2: कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो 700 डिग्री पे भी आग नहीं पकड़ती है
1: जी।
2: तो इसलिए जो मेनली हमारा फोकस रहता है वो टेम्परेचर के ऊपर रहता है। तो फायर ट्रायंगल के हिसाब से हमारा फ्यूल, इग्निशन, ऑक्सीजन, जब ये तीनों मिल जाते हैं
1: जी,
2: उस टाइम एक आग होती है।
1: यानी कि ये त्रिकोणा है,
2: त्रिकोण,
1: और इसमें आग यानी कि जलाने के लिए एक साधन जिसको कि आप फ्यूल बोल रहे हैं
2: जी, जी,
1: और एक तापमान, और तीसरा आपने बताया ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद होती है। यानी ये तीनों का मिश्रण होता है तो ही फिर आग लगती है
2: जी। जी जी, जो हमारा जिसमें फ्यूल है, जिसमें आग लग रही है, अगर हम उसको काट देंगे तो उसमें फिर वो आग आगे नहीं बढ़ती
1: जी।
2: तीसरा होता है हमारा स्मूदरिंग, जिसमें कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं। तो इस केस में हम कूलिंग और जो स्टारवेशन मेथड है, जिसमें हम ईंधन को काट देते हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आसपास ज़्यादातर बिजली की तारें मिलेंगी। और जैसे कि कल का मैं आपको इंसिडेंस बता रहा था अपना जो यहाँ हुआ है, कबूतर वगैरह जो तारों पर बैठते हैं कई बार
1: जी,
2: तो अगर वे बिल्कुल कहीं जॉइंट वॉइंट के आसपास है करंट कर दे, कंप्लीशन सर्किट बना देते हैं वे, अगर वो टच होते हैं तो वे एकदम इंस्टेंटली वो मर भी जाते हैं, उनके जो फर है वो फर आग पकड़ देता है।
1: अच्छा।
2: जब वो नीचे गिरते हैं तो वो जो नीचे सूखी फसल होती है उसमें फिर वो आग फैलती है।
1: और ये कारण तो सोच भी नहीं सकते कि कबूतर को वैसे तो पालते हैं, दाने डालते हैं या खेत में चुगते रहते हैं, लेकिन ये आग का कारण बन जाएंगे ये तो आपसे ही हम सुन पा रहे हैं
2: जी। कल का ही है ये इंसिडेंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कई और भी फैक्टर होते हैं। मुख्यतः जो होता है, जो हमने देखा है
1: जी,
2: या तो वो मैन मेड है या फिर वो बिजली के उससे अपने आग पकड़ रहे हैं।
1: यानी कि कुछ तो इन वजह से हो सकता है
2: जी जी,
1: या किसी की शरारत हो सकती है, ये दो कारण आप मान रहे हैं
2: जी जी जी।
1: इसमें कई बार ये देखा गया कि पहले जब से
2: फैलेगी नहीं, अगर लेकिन फुल्ली डेवलप फेज में आ गई
1: जी,
2: तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, और बियॉन्ड द कंट्रोल जाती है तो फिर उसमें नेचुरल बैरियर जैसे रोड हुआ, रेलवे लाइन हुई, नहर हुई
1: जी,
2: फिर वही उस आग को रोकने में कामयाब हो पाते हैं
1: जी।
2: जी
1: इसमें अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए?
2: सबसे पहले तो हमारा जो इमरजेंसी नंबर है 112
1: 112
2: और 101 इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे
1: जी,
2: और जितना हो सके आसपास से अगर कपड़े का हो गया
1: जी,
2: लोहे का भी हो गया
1: जी,
2: पर ये थोड़ा सा मतलब ये लगा लीजिए कि एक दो किले की आग है उस समय पे ज़्यादा काम आते हैं
1: जी,
2: अन्यथा अगर बढ़ गई है तो फिर जो सूखी टहनियाँ होती है अपने आसपास पास टहनियाँ पेड़ों की उसको लेके छोटी टहनियाँ जिसपे थोड़े बहुत पत्ते वत्ते हो
1: जी,
2: उसको पीटर के इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको जब मारेंगे तो आग उसमें रुक जाती है, लेकिन उसमें फिर क्या कि मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए
1: जी,
2: उसमें गांव वालों का और किसानों का अपना साथ मिलता है
1: जी,
2: जिससे कि हम कंट्रोल कर पाते हैं
1: जी। तो इसमें एक तो आपने बताया कि सभी सहयोग करें और नज़दीक आपके अगर संसाधन हैं, ट्रैक्टर है और हैरो वगैरह है तो वो चला के हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें पानी वानी का अगर कोई छिड़काव किया जाए क्योंकि खेत में
2: बिल्कुल जी पानी का छिड़काव होता है, पानी के छिड़काव से तो हम करते ही हैं
1: जी,
2: लेकिन
1: आपके आने से पहले,
2: आने से पहले का आपको हम सारा बता रहे हैं ये जो अपने लेवल पे किसान कर सकता है, और हमारे आने के बाद भी होता है क्योंकि लिमिट होती है हमारे पास भी
1: जी,
2: जो गाड़ियाँ होती है उनमें भी लिमिट होता है कि पानी इतना ही होगा, मान लीजिए 40-50 एकड़ में आग लग रही है तो वो एक गाड़ी के इतना नहीं होगा, वो नंबर ऑफ फिर टेंडर बढ़ाए जाते हैं, गाड़ियाँ फिर आती जाती है
1: जी,
2: ठीक है। लेकिन साथ साथ साथ साथ साथ ये भी काम होता है इसमें जो हमने आपको बताया हैरो वैरो का
1: जी,
2: ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसके बाद क्या है कि जो जल रहा था फिर उस पर दोबारा पानी मारा जाता है जिससे कि कोई चिंगारी ना दोबारा से भड़के और मान लीजिए बहुत ज़्यादा आंधी भी आ गई तो वो आगे ना फैले
1: जी। हाँ ये आंधी का या तेज़ हवा का तो एक संभावना बनी रहती है कि जब भी इस तरह की बात हो, तो उसको रोकने का कोई उपाय कि वो आंधी की वजह से हवा की वजह से दूसरे खेतों में ना जा पाए?
2: मेन तो देखो जी यही है अपना, और फिर अगर वैसे जनरली अगर हमने इसको इसी लेवल पर कंट्रोल कर लिया
1: जी,
2: इतने उस पर जाएगा नहीं, फिर जो जल चुका है ना
1: जी,
2: उसी को हम दोबारा कूल डाउन करते हैं कि कोई अंगार उसमें ना रहे। जैसे कई जगह क्या होता है कि हम जैसे कंट्रोल कर देते तो कई लोग ट्यूबवेल भी चला के छोड़ देते हैं इस चीज़ में
1: जी,
2: ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इतना पानी वेस्ट करे, अगर वो थोड़ा बहुत छिड़काव हो गया स्प्रिंकलर टाइप का भी हो गया उसमें भी वो भी सफिशियंट है उसको दबाने के लिए
1: जी, यानी कि अगर
2: फवारा
1: यंत्र है उनके पास में तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसको शांत करने के लिए
2: जी।
1: अब बात करें कि घरों में भी कई बार दुर्घटना हो जाती है
2: जी,
1: तो वो कौन कौन से कारण आपने देखे हैं?
2: देखो जी मैं आपको सबसे पहले एक क्लासेस ऑफ फायर बताता हूँ
1: जी,
2: जो हमारी हमने फायर को बांट रखे हैं
1: यानी अलग अलग श्रेणी है
2: जी जी, श्रेणियाँ
1: जी।
2: क्लास ए फायर हो गया जिसमें कि सॉलिड मटेरियल आ गया जो कि जलने के ऊपर कुछ ना कुछ राख पैदा करता है जिसपे हम पानी मार के बुझा लेते हैं आसानी से,
1: ठीक है।
2: क्लास बी फायर आ गया जो भी हमारा लिक्विड टाइप में हो गया, जैसे पेंट है, सॉल्वेंट्स है, ऑयल है, सब जिसमें कि पानी डायरेक्ट नहीं मारा जाता है, उसके ऊपर फोम डाली जाती है, एक झाग का एक लेयर बनाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन काट के उस आग को रोकने का प्रयास किया जाता है और आग रुकती है
1: जी।
2: तीसरा जो आ गया हमारे क्लास ही आ गया गैसेस और इलेक्ट्रिसिटी का,
1: बिजली का और गैस का
2: जी जी
1: जी,
2: जिसके अंदर पानी तो क्योंकि जो हम फोम बना रहे हैं वो फोम भी हम पानी का ही इस्तेमाल करके बना रहे हैं झाग जो है
1: जी।
2: क्लास सी में हो गया जिसमें कि पानी हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उसमें पानी का कोई मेजर रोल नहीं रहता है, वो बस कूलिंग का काम करेगा लेकिन वो कंट्रोल नहीं करेगा उसको, तो उस केस में क्या है कि हम पाउडर का इस्तेमाल करते ज़्यादातर
1: जी,
2: ठीक है, या तो सोर्स को काट दिया जाए या तो बिजली का जो है पीछे से बंद करके फिर उसमें वो अप्लाई करे, नहीं तो करंट मार सकती है अगर पानी डायरेक्ट मारेंगे, नहीं तो जैसे कोई गैस की आग है तो गैस की सप्लाई रोकी जाती है
1: जी,
2: उसमें पाउडर का एप्लीकेशन होता है। एक क्लास डी आ गया जो कि हमारे ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मेटल्स हैं जिसके अंदर अगर हमने पानी मारा तो वो और वॉलेंटरली रिएक्ट करेंगे और वो आग।
0: तो इस सब जानकारी के लिए श्री उत्कर्ष चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयो देखो जिस तरह ये बताया गया है ना कि आग पर काबू पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाए और उसकी कैटेगरियाँ बना रखी, उन कैटेगरिया के अनुसार अगर हम काम कराएंगे तो उसके ऊपर काबू पाया जा सके और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्वलनशील पदार्थ अपने घर में ना रखें तो सबसे बढ़िया रहे, नहीं तो फिर बहुत बुरी बारह दुर्घटना हो जाती है। और भाइयों ई वे गड़ी के ने देख लो कार्यक्रम ऐसे में और समाप्त, अशोक भाई ने जज दो, सारे बाण भाइयों ने राम राम।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। 7:10 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लावारिस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

बेताब। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों को। गीत जावेद अख्तर का लिखा हुआ है और संगीत दिया है शिव हरी ने।

भीगी पलकें। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों को। गीत लिखा है MG हशमत ने और संगीत दिया है जुगल किशोर तिलकराज ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक की इंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद फिल्म से। मुकेश की आवाज़ में योगेश की रचना और सलिल चौधरी का संगीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है. और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है. और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.
5: It is a historic tribute to India's longest-serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time, at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us as constantly keep it in mind.
3: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected prime minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister in consecutive terms. With 4,399 days of continuous service as an elected Prime Minister, Mr. Modi has surpassed the previous record held by former Prime Minister Jawaharlal Nehru, who served for 4,398 continuous days. Meanwhile, the Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.
6: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए.
7: Three decisions were taken in today's cabinet meeting. One decision concerns the expansion of the Ahmedabad metro, while other two relate to Amravati, the new capital city being developed in Andhra Pradesh. The cabinet approved the Ahmedabad metro phase 2A corridor from Koteshwar Road to the airport in Amravati. Several central government offices will be brought together in a single complex. Two projects have been approved for this purpose: a residential complex and an office complex.
6: तो residential complex है और office complex है.
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme. With a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees, the approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fiber, MMF apparel, MMF fabrics, and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System, GNSS, jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, Barasal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards empowerment of the youth.
8: In the past 12 years, the government has given focus to the youth power of the nation. India's next generation reforms have now turned into a reform express with youth power at its core. Young Indians are central to building a developed India and shaping the country's future across sectors. More than 12 crore new entrepreneurs have received PM Mudra Yojana loans, giving wings to the dreams of youth. The government is empowering youth to drive employment and self-reliance, and youth becoming job creators, not job seekers. A female entrepreneur from Raipur in Chhattisgarh, Isha Patel, shared her inspiring journey from cooking at home to establishing a successful cafe business.
9: Many young people feel that they lack funding, but often they are not aware of the various government schemes available to support them. My suggestion would be to do some research on these opportunities. For example, there are schemes like Mudra loan and the PM EGP loan, along with several other loans that are available without requiring collateral.
10: Business kariyo aur jitna chahe utna grow kar sakte
8: hain. More than 60 lakh youth have been benefited under the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana. Over 1.6 crore youth have been trained under PM Kaushal Vikas Yojana. A growing pool of skilled talent is powering the Make in India initiative. 12 lakh appointment letters distributed through Rozgar Melas, turning employment dreams into reality. More than 2.2 lakh startups generated over 23 lakh job opportunities and 16 lakh innovation projects developed by students, providing a powerful foundation to the startup ecosystem.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी के गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म चोरी चोरी के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे,

0: हमारे महिला सेना के अधिकारी थे, तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो, या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से, या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और

0: आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकाल कर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवने थे, भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
0: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से

0: कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहेगी।

श्रोताओं हाजिर हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम लेकर मंच है गीत। आप सभी इस कार्यक्रम में हमें पत्र लिखते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल करें और आपको सुनवाएं आपकी पसंद का गीत। जो श्रोता हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं। कृपया हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मंच है गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, रोहतक का पिन कोड 12400 लगाना न भूलें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं खुदा गवाह फिल्म से अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। यहाँ पे मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, निहारिका, सुनीता जैन, किरण, भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, प्रोमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।

आप हैं बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, अनमोल डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे। नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय। निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद।

है परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तीन देवियां से किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

आप हैं रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, रितु सिंह। धनबाद झारखंड से अमित कुमार, प्रियंका सिंह। बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, आरती। तालुका लातूर हून से आप हैं उस्मान शेख, दस्तगीर शेख, सायरा बानो शेख, शाकिर शेख, इस्लाम बी शेख, करिश्मा शेख। संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल। आप सभी सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

ये पत्र हमें आया है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से, गुरविंदर सिंह पांघा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा, पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, मीनाक्षी, रजनी, चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी से मुकेश की आवाज को। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

आप हैं जलगांव जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्वनी भूतेकर। वैष्णवी औरंगाबाद से मेघराज, युवराज, रिधोरा देवी, रुद्र। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जय तेग वीरक। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर, सरिता गुहाणकर, एकांश गुहाणकर। बहादुरा नागपुर से वैशाली गुहाणकर, सुमित गुहाणकर और ध्वनि गुहाणकर। आप सभी सुनना चाहते हैं बॉबी फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप हैं गांव खैर का, ज़िला सिरसा से। इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, मुक्तसर पंजाब से आप हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत, निशु। मुंबई से अहमद फूल वाले, दुखना, आरजू, जूही इकबाल, आमना, इमरान। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता, गीता। आप सभी सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये पत्र हमें भेजा है आप हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरु साहू, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से आप हैं राजू टुटेजा, उर्मिला टुटेजा, मनु, आदित्य, राखी, अमृत, शिव, और गांव बलियाली जिला भिवानी से आप हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश बंसल, प्रवीण बंसल, ममता बंसल, कमल बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गोरा और काला से मोहम्मद रफ़ी को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बुढ़ा मिल गया। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ को, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। आप हैं मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, डब्वाली से जेके बकौलिया, सुनीता बकौलिया, संजय अनिल, झुंझुनू से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, गणेश जोशी, खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकीब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार,

आप हैं अलीका डबवाली से बसंत सिंह, चंद्र राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, सई गायकवाड़। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रजाक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। लखनपुर छत्तीसगढ़ से पत्र में भेजा है आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजिनी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी सुनना चाहते हैं तहलका फिल्म से अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, बाबला मेहता और साथियों की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं। अपने दोस्त सुशील कुमार को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को

0: बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open Tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय रात के 11:10 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी व अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।